0: चिंतन तो मनुष्य एकांत में मन के गहरे पर्दे में छिपकर ही करता है, किंतु उसका प्रकाश स्वयं चारों ओर फैल जाता है। वातावरण मनुष्य के विचारों का दर्पण है। जिस तरह एक एक बिंदु से तालाब भरता है, उसी तरह एक एक विचार से मनुष्य जीवन का भविष्य बनता है। विचारों का जैसा चुनाव करेंगे, भविष्य वैसा ही बन जाएगा। अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में समय मत गवाइए। जिस क्षण आप विचारों में उच्चता लाने का संकल्प करेंगे, वही क्षण आपके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण बन जाएगा। किसी भी रचनात्मक विचार सारणी का चुनाव कर लीजिए। उसके बीजों का बपन आपके अंतःस्थल की गहराई में शुरू हो जाएगा। विचारों में ही जीने का अभ्यास कीजिए। आपका जीवन विचारमय हो जाएगा। इस मानसिक क्रिया का प्रभाव स्वयं ही आपकी दैनिक चेष्टाओं में प्रकट होने लगेगा। विचार कभी प्रभाव शून्य नहीं रहते। प्रभाव प्रकट होने में देर भले ही हो जाए।
1: सुप्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:55 हुई है और इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। मैं आपकी रेडियो साथी आरजे पूनम आप सबका इस प्रभातकालीन सभा में स्वागत करती हूं। आज सन 2026 के जून महीने की 14 तारीख है तथा दिन है रविवार। आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो तथा एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक एल ताली तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए लेकर आए हैं ढेरों ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं और आपको देते हैं आज की प्रभातकालीन सभा में अब से लेकर सुबह के 11 बजे तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

सुबह 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार। 6:05 पर अंग्रेजी समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत।

6:40 पर आप सुनेंगे गालो श्रोताओं के समाचार। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। आपातानी श्रोताओं के समाचार प्रसारित होंगे 7:10 पर। सात बजकर पंद्रह मिनट पर आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम। तागिन श्रोताओं के समाचार 7:35 पर प्रसारित होंगे। 7:40 पर आप सुनेंगे सदा बहार कार्यक्रम।

8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात प्रसारित होगा। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज तथा 8:30 पर शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज प्रसारित होगी।

8:40 पर आप सुनेंगे हेलो ईटानगर कार्यक्रम 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार 9:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। जी हां, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 6 बजने वाले हैं और अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है, जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी ईटानगर कारून FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे गालो श्रोताओं के समाचार।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर लियो फोल लोरिगोला लोपी जीत आरोलो गालो मेंगम मेनलैन जिदून सी लेफर गद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मेरो डेमोक्रेफिक चेंज बाबेलो कवा दुग दुला कमिश्नम डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लो डेमोक्रेफिक चेंज स्टाडी रुदब मेन टू ओक बॉर्डर एरिया मेट्रो सिटी ओक इंडस्ट्रियल टाउन गादिलो असेसमेंट लगाव कमिश्नम विजित दबचिन मेन टू इनेन पोलो ओगो सेंटर हाई लेवल कमिटी गो कॉन्स्टिट मचोला इलीगल इमाइग्रेशन ओके कब कब सेंसिटिव ने रीजन एम काला स्टाडी रुदब मेन चौतो ओके जकन डेमोक्रेफिक चेंज एम अल जब दिल गदब चिन सजेस्ट टू फ्राइडे ओगो न्यू दिल्ली लो नीति आयोग कंडक्ट गनम नॉर्थ ईस्टर्न चीफ मिनिस्टर्स कबा दुदागलो चीफ मिनिस्टर पेमा कांदुम अरुणाचल प्रदेश लगाव स्पेशल पॉलिसी इंटरवेंशन ओके सपोर्ट रिजी दबरगुतु स्टेट गे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस डिफिकल्ट टेरेन ओके पॉपुलेशन गोले चल नाम एम मेन केन जिडुला पॉपुलेशन बेस्ड फंडिंग क्राइटेरियल कादी तादी जिदब मेन टू ओके 250 एम ला एम अत्यान रेसिडेंट दोलु एम कोवार दब PMGSYM मोताल जिदब चिन सेम कांदुम रघुजिता तु ओक्टाया लो केवालो 2047 दुताक्लव स्टेट ग 40,000 मिलोवाट हाइड्रो पावर मदब टारगेट नाम लोचिन सपोर्ट रादब रघुतु यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजुम लुगो आलो ओगो नरेंद्र मोदी ग लीड बीजेपी सरकार ग अन्य न्यूरगोला न्यूनि आरालोक एचीवमेंट पानम मेन केंजिडुला इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वेलफेयर टेक्नोलॉजी ओके नेशनल सिक्योरिटी गादलो अच्छी आरोप प्रोग्रेसम लाका एलाजाब जितु केनलो ईटानगर बीजेपी हेडक्वार्टरलो प्रेस कॉन्फ्रेंस एम एड्रेस दुला निर्म रिजिजुम मेनला रूरल रूट्स रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एविएशन सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फिनेंशियल इंक्लूजन ओके इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन गादिलो लाभ रिलेन नाम एमचिन मेनजिला जितु ओके अरुणाचल लो डिनचिने प्रोजेक्ट सेला एमला निशिप्यू टनल्स ओके फ्रंट टियर हाईवे एमचिन जापारूपा जिला ऋतु तावांग टाउनशिप ग लेब्रियांग एरिया लो थर्सडे ओगो 1962 इंडो चाइना निमाक ओके गारीब कानम मोटेल सेल बम बुकमा बेदोनेगो कापाला केनलो फ्राइडे ओगो इंडियन आर्मी डिप्यूस रिगे कोबा एजिदा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टीफानाकम वर्ल्ड ब्लड डे लो ब्लड जिगुर ने गादम कुमनाम जनम आगमे मेन जितु मेनला इ जिगुर ने गादगे मलाक मलाक कलक नि किचन मानम लोदाग बे तुरदो बे जिगुर राने मुनु साइलेंट हीरो एला मेन तु ओके दरकार जाद इमरजेंसी लो पेशेंट एम मुनु तुरदे को बेदा एम मैगजी मदो आउ बेतर एम अन्नम इ जिगुर राला सर्जरी ओके कैंसर ट्रीटमेंट दुदाकलो इ जिगुला तानी गे दरकार यारुद समयलो तुरनाम कातम रादो एला गवर्नर कोइक तातु मेनके नागम सिम नन आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन लोक के तापादु अरुणाचल प्रदेश लगावे नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड NERRAMAC गे प्रपोजल कातम नाम एम कादी तारी जिदुला एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर गैब्रियल डी वांगसुम साइंटिफिक डेटा ड्राइवन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट लोक दरकार देनम जाब जितु प्रपोजल लो इंटीग्रेटेड फ्रूट प्रोसेसिंग फ्रूट पार्क एंड प्लांटेशन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट गुच्छी ओके सीटेक मशरूम लगावे चेन वैल्यू डेवलपमेंट रिजे ओके स्टेट जगो लार्ज कार्डमान लगावे ई ऑक्शन सेंटर मोलिकजेम लिखतु तानी लिपि एम मोलेन रिलेन गने टनी कयुने इनेने लुगो आलो अगो पासीघाटलो प्रेस्टिजियस ल्यूमिनस लुमाडाई लिटरेरी एवार्ड 2026 एम जिका एवार्ड एम परमार चीफ मिनिस्टर मुकुट मिटी गे अलागलोक जिला कयुगे अरुणाचल प्रदेश लो लिटरेचर ओके language development lo mega outstanding contribution jinam lagalo fagla rila jitu Arunachal Pradesh Literary Society ga molen jinam award lo memento citation books ok case prize 50,000 go kadu Lower Siang District Administration a nido follow jogo resident NG Kajila re dabe monsoon advisory notice go jilentu advisory lo nido achibe ola dore dogomrila jibuk jilo tela ok didir rachek loke NG Kajila re dabe ok tale almaram jarni immo madabe mentom tu Itanagar Meteorological Center Arunachal ga district akke golo yelo alert jila joke chenyu cherelo dore dogum dorak rak tala nido tute de do ela menno jibatu ka jiru ga galo men kena gome ege
0: अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं के समाचार। श्रोताओं दोस्तों आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम सुबह सवेरे, जिसमें हम बात करेंगे योग के बारे में कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। तो चलिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत नगमे के साथ,

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म का ये बेहतरीन गीत अमित त्रिवेदी की आवाज में। श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे का। दोस्तों, तो आज के इस खास कार्यक्रम में बात करते हैं हम योग की। दोस्तों, आपने हमेशा ये सोचा होगा कि योग है क्या। अगर हम सिर्फ योग शब्द को सोचें, योग अगर हिंदी मायने में शब्द का मतलब है जोड़ना, यानी कि एडिशन, किसी दो चीज को जोड़ना ही योग या एडिशन कहते हैं। तो अब हम ये सोचेंगे कि योग, जो हम योगा करते हैं, और योग क्या वो अलग अलग है? नहीं दोस्तों, वो भी एक ही है। योग और योगा एक ही बात है। योग का मतलब है जोड़ना। तो किस चीज का जोड़ना? ये है शरीर और मन, या फिर शरीर और आत्मा, इन सब का जो जोड़ है, यानी इन सब को एक दूसरे से जोड़ना ही योग है। यानी कि आप अपने मन को एक तरह से कंट्रोल कर सकें, आप अपने शरीर को कंट्रोल कर सकें, वही योग है। जो हमारा शरीर है और जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, उनको जोड़ना भी योग है। यानी कि हम जो बैलेंस बना के चलते हैं माइंड और बॉडी का नेचर के साथ, वो योग है। लेकिन ये जो योग है, ऐसा हमें हमारे समझने के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम शरीर और मन को कैसे जोड़ें, या शरीर को प्रकृति से कैसे जोड़ें। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है। तो उसी के लिए आज से 5000 वर्ष पहले महर्षि पतंजलि ने

बहुत से तरीके बताए कि जिससे हम धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच जाएं कि जिसमें शरीर और मन आपस में जुड़ा हुआ जुड़ने लगे या हम उनको जोड़ सकें। तो उसके लिए उन्होंने 8 प्रकार यानी 8 तरीके बताए, जिसमें था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब आपको लगेगा कि मैं ये सब क्या बोल रही हूं। तो दोस्तों, ये उन्होंने 8 अंग बताए थे जिनसे कि हम जो हमारा शरीर, मन और प्रकृति या आत्मा भी कह सकते हैं, उन सब को आपस में जोड़ सकते हैं। यम का मतलब होता है जो हमारी मॉरल ड्यूटीज आप कह सकते हैं एक तरह से, जैसे कि हम झूठ नहीं बोलें, किसी के साथ मारपीट नहीं करें, इस तरह के जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं उसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नियम में हम एक नियम बना सकते हैं, यानी कि जैसे क्लीनिनेस का ध्यान रखना, हमारे सराउंडिंग की क्लीनिनेस, हमारी बॉडी क्लीनिनेस, और इस तरह से ये नियम में आप समझ सकते हैं। उसके बाद आसन, यानी कि जो योग में जनरली होता है पोस्चर्स, जैसे बहुत सारे आसन होते हैं, भुजंगासन है, ताड़ासन है, इस तरह से जो आसन जो हम करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट अच्छा आता है, यानी हम फिट दिखते हैं, वेट लॉस होता है, हम हेल्दी लगते हैं, वो आसन होते हैं। उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम यानी जो भी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, इस तरह से ये सब प्राणायाम के अंदर आता है। उसके बाद होता है प्रत्याहार, यानी कि जो हमारा मन बार बार बाहर जाता है, जो हमारी इंद्रियां हैं, यानी कि आंखें, कान, नाक, स्किन, इस तरह से जो हमारी इंद्रियां हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जो चीजें हैं उनको करने का मन करते हैं। जैसे आंख का मन करता है हर वक्त स्क्रीन देखते रहें, या फिर आपको जो अच्छा लग रहा है उसको चीज को देखते रहें, एक ही टाइप ऑफ चीजें। खाने में जैसे टंग का क्या काम है कि आपको बार बार मन करता है जो भी आपको खाने का मन है, लाइक फास्ट फूड और इस तरह की चीजें खाने का आपका मन करने लगता है, इसी तरह से अलग अलग चीजें। तो इनको जो हम कंट्रोल करते हैं उसी को प्रत्याहार कहते हैं। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि को आप एक ही तरीके से समझ सकते हैं, जो कि है मेडिटेशन, यानी कि आप अपने शरीर के ऊपर, आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें कि आपके शरीर में क्या क्या चल रहा है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा तो आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान रख सकते हैं, वो भी एक तरह से इसी धारणा, ध्यान और समाधि का एक पहलू है। या फिर आप अपने विचारों को भी देख सकते हैं, लेकिन उन विचारों को एक दूसरे इंसान की तरह देखना है, उनमें उलझना नहीं है। तो दोस्तों, कितना खूबसूरत तरीके से उस दम इतने साल पहले महर्षि पतंजलि ने इन सब के बारे में बताया। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं, आपको ये तो मालूम ही होगा आजकल जो बीमारियां हैं कहीं ना कहीं हमारी सोच से संबंधी हैं। हम सोचते इतना ज्यादा हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग या एंजाइटी आ ही जाती है, और हम सही वक्त पर सो नहीं पाते, कभी ना कभी हम कुछ ऐसा खा पी लेते हैं जिसे हमें नहीं खाना चाहिए, जो कि हम जानते हैं कि ये चीज हमारे लिए हेल्दी नहीं है, फिर भी हम खा लेते हैं उसे। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो योग से हमारी ये जो प्रॉब्लम है, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस की, नींद नहीं आने की, जो भी मेंटली हमें डिस्टर्ब करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स बहुत ईजिली हम ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे हम वेट लॉस को भी कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, और बहुत सारे ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको भी हम इनसे बेहतर बना सकते हैं, यानी योग।

से हम उनको बेहतर कर सकते हैं और हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि कभी भी योग ऐसे खुद से ना कीजिए, क्योंकि हमेशा किसी एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आप योग करना चाहते हैं, तो आप अगर ऑनलाइन में देख रहे हैं तो कोई ऑथेंटिक या जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें उसकी अच्छे से देखभाल करके हम वहां ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं योग को, तो अपने आसपास के एरिया में देखिए कि कहाँ पे आपको योगा इंस्ट्रक्टर, योगा थेरेपिस्ट आपको मिल सकता है और उनकी देखरेख में ही योग कीजिए। कभी कभी हम कुछ चीजें गलत कर लेते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है और फिर हमें लगता है कि हमने योग किया इस वजह से ऐसा हो गया, लेकिन वो हमने गलत योग किया इस वजह से ऐसा होता है। तो अगर आप ईटानगर में सोचेंगे या फिर अरुणाचल में सोचेंगे तो कहाँ आपको योगा इंस्ट्रक्टर वगैरह मिल सकते हैं, तो जनरली आजकल गवर्नमेंट योगा को बढ़ावा दे रही है और आपको योग के जो भी थेरेपिस्ट हैं या इंस्ट्रक्टर हैं वो आपके आसपास के हॉस्पिटल्स में मिल सकते हैं, जैसे आरके मिशन हॉस्पिटल है, जैसे कि केवी में टीचर्स भी होते हैं, वो भी काफी जानकारी रखते हैं योग के बारे में। लेकिन आखिर में आपको ही उस योगा इंस्ट्रक्टर थेरेपिस्ट को जांचना है कि आप जैसा चाहते हैं क्या वो उतनी जानकारी रखते हैं या नहीं, और उसके बाद आप अपने योगा की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने बहुत सारी योग के बारे में जानकारी ली, बहुत सारी बातें की। अब हम आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन खूबसूरत गीत जो लिया गया है फिल्म वेक अप सिड से, उसका टाइटल ट्रैक, जिसे गाया है शंकर महादेवन ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। अब आप सुनेंगे आपातकालीन श्रोताओं के समाचार।
1: यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कमिश्नर गिहो मिथिनु का कमी दुगला कमीशन में डिस्ट्रिक्ट गताओं का बोधारो का डेमोग्राफिक चेंज में आयपा सुखसर मुत ते हला मो का दायक डायरेक्शन में बिला मुत होसा का मिथिनु कुन सुको यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हरापा कमीशनर तमे बॉर्डर एरिया मेट्रो सिटी हो इंडस्ट्रियल टाउन गंदा तमलाओ डेमोग्राफिक चेंज में उरपाया पासो कसरा रपा मुत ते हला मो कदे के लोगला मत इन कुन फ्राइडे आलो का नॉर्थ ईस्टर्न अटंका चीफ मिनिस्टर अटंका नीति आयोग मीटिंग को में का दुकुन सको न्यू दिल्ली अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश का पुतुकोमी हेमदोला और स्पेशल पॉलिसी इनहेंस सपोर्ट में हेम रपा मुत ते हला हरापा पीएमजे स्वाय मलामी लेमग्रा अभ्यपा एक्सपेंशन में दोपा मुदो को हेंडो हला मो गले कुलुकु गला मुत इनकुन फ्राइडे आलो बीजेपी स्टेट हेडक्वार्टर ऑफिस इटानगर यूनियन होम मिनिस्टर किरण रिजिजु मिटिंदु कुसुको लुकला लुनेन नंदा मोदी लीड गवर्नमेंट दन्या जैला न्याय न्याओ अनु उरोजे कामाल में इतिहला और यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजु लुको ने नरेंद्र मोदी लीड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वेलफेयर टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी अतामी उरोपादा मोका म्योर म्योलो टेनरो कामी ये लम इतिहला लुकला लुपाने पुईपोता बिकने के लुको ने इनकुन फ्राइडे आलो इंडियन आर्मी अटंग तवंगानका लेवरंग होका 1962 इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट होका अनएक्सप्लोडेड मोटर सेल दोन में सेफली डिफ्यूज मुतिहला लुकला लुपाने अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे आलो सोको होका वॉलंटियर डोनेशन आई बिला मुने आतामी मुह कर एक ओर पड़ा असला ओ हरापा आई ने म्योट मेल मलाओ आई मी डोनेट मुड़पा मुतो तेहला मुह कर एक तो सगला मगला मुत एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर गवर्नर डी वंशु नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर अरुणाचल प्रदेश हला रिव्यू मीटिंग कुंसको साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में उरो पर मलमा गर पर मुत तेला मोक देक तो सगला मगला मुत इने कुन फ्राइडे आलो पसिगातो तनी लिफी इन्वेंटर टोनी कोयमी लुमिनस लुमर डाइल लिटरेरी अवार्ड 2026 अमियाईमी बिला मुत हला लुकला लुपाने ओसका अमियाईमी बिल चीफ मिनिस्टर मुकुट मिती बिला मुत हला लुकला लुपाने मेट्रोलॉजिकल सेंटर इटानगर के डायोक अरुणाचल प्रदेश का खे डिस्ट्रिक्ट आताओं आईने म्योरमेलो ओपा येलो एलर्ट में इसु बितहला लुकला लुपाने सरकतन पुलो को सने हम कने सरकतन बुस पुरंगा में मलियम भई कपिजा पसरनुनु हागे तेरे का कौन चितातु बर्मा यह हल्का बुशनी मिता पता था।

कहा जा सकता है। के पान्योर ने में शिक्षा को मजबूत करने के लिए विधायक ने एकलव्या के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पागलाम में जंगली घोड़े ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। असम के द्रिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान में भटककर निचले दिबांग घाटी जिले के पागलाम क्षेत्र में जंगली घोड़ों के अप्रत्याशित आगमन से वन्य जीव कार्यकर्ताओं, पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक और खूबसूरत गीत जो कि लिया गया है फिल्म महाराजा से। तो चलिए दोस्तों, इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं। अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट का। तो दोस्तों, आज हमने लोकल डेलीज की बहुत सारी जानकारी ली और आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: दिल से दिल की बात।
1: श्रोताओं दोस्तों, अब हम सुनेंगे तागिन श्रोताओं के समाचार।

0: अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं के समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्स है, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम, ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोतों दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम सदा बहार, जिसमें हम बात करेंगे वेदर अपडेट्स की कुछ खूबसूरत गानों के साथ। तो चलिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत गीत के साथ।
1: अरे मुन्ना, मैंने उसे देखा तो ऐसा

0: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोतम दोस्तों, अब जानकारी लेते हैं आज के मौसम की। आज सूर्योदय हुआ 4:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:10 पर। आज अगर देखें तो पूरे दिन में सूरज की रोशनी का लुत्फ उठा सकते हैं लगभग 13:50। आज का उच्च तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा और निम्न तापमान रात को 22 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। लेकिन आज आपको महसूस होगा कि जैसे तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस है। आज आसमान में कभी बादल तो कभी धूप रहेगी और अनुमान है कि रात में बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। आज हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रहेगी और हवा साफ रहेगी। तो दोस्तों, ये थी वेदर अपडेट्स। अब सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत जो लिया गया है फिल्म दम लगा के हईशा से, मोनाली ठाकुर की आवाज में। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सदा बहार का, जिसमें हमने जानकारी ली मौसम के बारे में। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत, जो लिया गया है फिल्म टक्कर से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार। ये आकाशवाणी ईटानगर का आरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. U.S. President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोतों दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक कहानी के बारे में और उस कहानी से हम कुछ सीखेंगे और साथ ही साथ आपको सुनाएंगे कुछ बेहतरीन गीत। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की एक बेहतरीन गीत के साथ।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
1: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों, अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर का। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपको सुनाते हैं वो कहानी जिससे आप कुछ बेहतरीन सीखेंगे। तो इस कहानी का शीर्षक है क्यों कोसता है खुद को। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगाजल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगाजल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगाजल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आह, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है। दूसरा, अब यह संतों के काम आएंगे। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लादकर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लादकर उसने मुझे बाजार में भेजने के लिए लाया गया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद भी मेरी कीमत लगाई गई तो क्या, बस 20 या 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि ईश्वर सारे अन्याय मेरे ही साथ कर रहे हैं। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हैं, मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और अब मुझमें गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया। अब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी ही कृपा थी, उसका मुझे वह गूथना भी उसी की कृपा थी, मुझ पर आग जलाना भी उसकी ही मौज थी, और बाजार में लोगों द्वारा ठोके जाना भी उसकी ही मौज थी। अब मालूम हुआ कि मुझ पर सब उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियों हमें इतनी विचलित कर देती है कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहने लगते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्या मैं इतना बुरा हूं, और मालिक ने सारे दुख तकलीफें मुझे ही क्यों दिए। लेकिन सच तो ये है, मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए आपको चुना है। अब तराशने में थोड़ी तकलीफ तो झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें कठिनाई आती है तो हम कहीं ना कहीं हमारे ईश्वर के अस्तित्व पर उंगली उठाने लगते हैं और हमें लगता है कि क्या वो हमें सारी परेशानियां सिर्फ हमें ही हमें देंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब रात बहुत गहरी होती है तो उसके बाद ही सवेरा होता है। यानी जब आप बहुत दुख या परेशानी आपको महसूस हो रही है तो आप समझ लीजिए कि अब सुबह की किरण यानी खुशियां आने वाली है। और साथ ही साथ इस कहानी का मतलब ये भी है कि आपको अगर बहुत सारी पीड़ा या तकलीफ मिल रही है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा चुने गए हैं, क्योंकि आप उस पीड़ा को झेल सकते हैं और अपने आप को उस पीड़ा से निकाल कर या उस दुख से निकाल कर

0: श्रोतों दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो ईटानगर, या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब हम सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में बताया कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा था। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी मौजूद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मॉनसून के स्वागत का त्योहार बताया। उन्होंने कहा कि त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में फीफा विश्व कप 2026 में ब्राजील ने ग्रुप सी के मैच में मोरक्को के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। इससे पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में कतर और स्विट्जरलैंड के बीच भी ग्रुप बी का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इस बीच हैती और स्कॉटलैंड का मैच जारी है। आज के अन्य मैचों में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप डी में तुर्की से 9:30 बजे और जर्मनी 10:30 बजे ग्रुप ई में कुराकाओ का सामना करेगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on the key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with the members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi and Bharatnatyam presented by French and Italian artists. The vibrant reception reflected the strong cultural and people-to-people ties between India and France. Our correspondent has the details.
4: Prime Minister.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम जिसका नाम है फिल्मी गपशप। ये है वो जगह जहां आपको मिलेगी बॉलीवुड टाउन की फुल अपडेट, ओटीटी के नए धमाके और बॉक्स ऑफिस की ताजी हवा और मूवीज रिव्यूज। तो चलिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत गीत के साथ। चुलिया गया है फिल्म गदर।

टू से, जिसके बोल हैं ऊर्जा काले कामा। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। तो अगर आज की हम कुछ खबरें देखें, तो आज जानते हैं बॉलीवुड की कुछ नई अपडेट्स और नई खबरों के बारे में। लगान के 25 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित खास इवेंट में जब सलमान खान पहुंचे, तो सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी रह गई। छोटे बालों वाले लुक ने सभी को सरप्राइज कर दिया। आमिर और करीना कपूर भी उनको देखकर दंग रह गए। इस इवेंट में सलमान खान बहुत छोटे बालों वाले एकदम नए लुक में नजर आए, क्योंकि यह उनकी आने वाली फिल्म के लिए है। इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, क्योंकि सलमान खान ने इवेंट के लिए पूरी तरह से ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। उनके साथ आमिर खान और करीना कपूर भी मौजूद थे। करीना ने सलमान को गले लगाया और उनके नए लुक की तारीफ की। मामला लीगल है के बाद अब गुल्लक 5 में दिखा अन्नु भैया उर्फ अनंत जोशी का जलवा। किरदार के जोखिम पर की बात। दीपेश पांडे मुंबई वेब सीरीज मामला लीगल है और फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी जैसे प्रोजेक्ट्स से अभिनेता अनंत जोशी ने सफलता की लय बरकरार रखी। मामला लीगल है 2 अपने दिलचस्प अंदाज में दर्शकों को मुग्ध करने के बाद अब वे सोनी लिव पर हालिया प्रदर्शित वेब सीरीज गुल्लक के सीजन 5 में अनु मिश्रा की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इससे पहले शो के 4 सीजन में यह भूमिका वैभव राजा गुप्ता ने निभाई थी। ऐसे में यह भूमिका निभाने के जोखिम को लेकर अनंत कहते हैं, जिंदगी का दूसरा नाम ही जोखिम है। ऐसे में सिर्फ जोखिम के बारे में सोचकर कुछ नहीं किया जा सकता। इस शो को इतना प्यार मिला कि इसके कलाकार इतने अच्छे हैं, शायद मेनस्ट्रीम ओटीटी का पहला शो और जिसके 5 सीजन आए हैं, फिर इसका हिस्सा बनना मेरे लिए बड़े अवसर से ज्यादा क्या हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने बोला, मैंने स्वयं को यह गारंटी दी कि मैं इस भूमिका में अपना 100% दूंगा। अगली खबर है जया बच्चन के इस्तेमाल की हुई साड़ी पहनी बस स्टॉप पर बदले कपड़े नरम गरम की एक्ट्रेस का ये है खुलासा। ये जो है जिंदगी जैसे धारावाहिक से घर घर लोकप्रिय हुई अभिनेत्री स्वरूप संपत का थिएटर से एक पुराना नाता रहा है। इन दिनों अनुपम खेर के प्रोडक्शन हाउस में नाटक जाने पहचाने अनजाने में अपने अभिनय के लिए काफी सराहना बटोर रही है। अभिनेता परेश रावल की पत्नी स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही है। स्वरूप संपत ने से हुई खास बातचीत के कुछ अंश हैं। इन्होंने कहा कि मैंने एक्टिंग से ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन मेरा अपना प्रोडक्शन तो ही रहा, इसीलिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ रुक गया था। घर के इन विषयों पर हर समय चर्चा होती रहती थी। अनुपम की जो नाटक का प्रस्ताव दिया, ऐसा नहीं कि मुझे फिल्में पसंद नहीं है, दरअसल मुझे ऐसे अवसर नहीं मिले जिनके बारे में मुझे लगे कि नहीं, यह तो मुझे हर हाल में करना ही चाहिए। तो ये उन्होंने बताया अपने बारे में। काला ताजमहल बनवाना चाहते थे के आसिफ एक लाख की ईदी से बना था मुगले आजम का ऐतिहासिक सेट। मुगले आजम के लिए दुनिया में आसिफ साहब की को जानती है। ऐतिहासिक कहानियों के रूप हले पर्दे पर दर्शाने को लेकर उनका जुनून अलग ही था। आसिफ साहब एक और फिल्म बनाना चाहते थे ताजमहल। उन्होंने राजेंद्र कुमार से अपने दिल की ये बात साझा की थी। आसिफ साहब का कहना था कि पूरी दुनिया सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की भव्यता और उनकी शानदार कारीगरी की सराहना करती है। मैं भी ताजमहल बनाना चाहता था पर मेरा ताजमहल काला होगा। राजेंद्र साहब चौंके कि काला ताजमहल कैसे। उस पर आसिफ साहब ने जवाब दिया कि फिल्म में एक सीक्वेंस होगा कि ताजमहल का निर्माण पूरा हो गया, कारीगर उसी खुशी में रात को जश्न कर रहे हैं। नव निर्मित ताजमहल का तारा पोलिन से ढका गया है ताकि सुबह बादशाह वह आवरण हटाकर उसकी दीदार कर सके। तभी वहां आग लग जाती है और आगजनी में काफी बर्बादी होती है और सुबह जब आग शांत होती है तो कारीगर देखते हैं सामने काला ताजमहल है। तारा पोलिन जल चुकी है, उसकी काले को समेटे ताजमहल भी काला दिख रहा है। सारी मेहनत राख में बदलती दिखती है। तब मुख्य कारीगर दुआ मांगता है और उसके जहन में है कि मैंने जो ताजमहल बनाया था वो ये नहीं है। उसी समय बारिश होती है और सारा धूल व कालिक बह जाती है। तो इस तरह से उन्होंने कहानी सोची थी। अगली खबर है 30 साल पहले बेबस मोहब्बत के आगे छलनी हुआ था लाखों लड़कियों का दिल। अलका याग्निक के कल्ट गाने पर जमकर बन रही है रील्स। एंटरटेनमेंट बॉलीवुड सिनेमा ने दिल टूट आशिकों के लिए कई गाने बनाए हैं, लेकिन इनमें से कुछ एक ही है जो कि लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। इश्क में धोखा मिलने, बेवफाई और बदले की आग में कई सिंगर्स ने कई गाने गाए हैं। अक्सर प्यार में धोखा खाए लोग अपने गम को भुलाने के लिए उन्हें गुनगुनाते हैं। आज हम आपको साल 1996 में आई फिल्म खिलौना का एक बेहद खूबसूरत और इमोशनल गाने के बारे में बताएंगे। यह गाना अपनी गहरी शायरी, दिल को छू लेने वाले संगीत और किरदारों की बेबसी को दिखाने के लिए जाना गया है। इस गाने में आशिक अपनी माशूका से कह रहा है कि हम जानते हैं कि तुम हमें बर्बाद करोगे, लेकिन फिर भी थक हार कर मेरा दिल तुम्हारे पास ही आता है। इस तरह का ये गाना है। इस गाने के लिरिक्स समीर ने लिखे थे और अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ने इसे अपनी आवाज से सजाया था। संगीत नदीम श्रवण का, इमोशनल म्यूजिक किया था। ये गाना आपको भीतर तक झकझोर देगा, हो सकता है रोने के लिए भी मजबूर कर दे। गाने में प्रेमी एक तरीके से प्यार में बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी वह अपने दिल, अपनी महबूबा के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। तो दोस्तों, इस बेहतरीन गाने का बोल है मैं वापस आऊंगा, जो कि अभी काफी वायरल हो चुका है। अगली खबर है सलमान खान ने रिजेक्ट कर दी थी कल्ट फिल्म। शाहरुख खान ने बना दी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। दोस्तों, साथ में करण अर्जुन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले सलमान खान और शाहरुख खान सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। दोनों ने एक से बढ़कर एक हिट देकर इतिहास रचा है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जिसे गाया है फाल्गुनी पाठक ने, जिसके बोल हैं मैंने पायल है छनकाई। तो चलिए दोस्तों, इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0-liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: श्रोतों दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। तो चलिए अब जानते हैं कौन कौन से मूवीज लगी है थिएटर में। तो सबसे पहली अगर हम फिल्म देखें तो जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता, फिल्म लगी है जिसकी रेटिंग भी काफी अच्छी बताई जा रही है। आउट ऑफ 10 9.1 रेटिंग है। अगली जो फिल्म है वो है हॉन्टेड इकोस ऑफ द पास्ट। इसकी रेटिंग भी देखें तो काफी अच्छी है, यानी कि लगभग 7.2 स्टार। ये हॉरर, रोमांटिक और थ्रिलर मूवी है। अगले फिल्म है बैक रूम्स, ये हॉरर और साईफाई फिल्म है। और अगली फिल्म है ऑब्सेशन, जो कि हॉरर और थ्रिलर है, और इसकी रेटिंग भी 8.7 स्टार तक है। अगली फिल्म है मैं वापस आऊंगा, ये एक ड्रामा और रोमांटिक फिल्म है। इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है, आउट ऑफ 10 इसे 9 स्टार मिलते हैं। अगली फिल्म जो लगी है उसका नाम है गवर्नर, जो कि ड्रामा और हिस्टोरिकल थ्रिलर फिल्म है। अगली जो फिल्म है उसका नाम है डिस्क्लोजर डे, जो कि ड्रामा, साईफाई और थ्रिलर फिल्म है। और अगली फिल्म लगी है जिसका नाम है पेडी, जो कि एक्शन, ड्रामा और स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिल्म है। और आखिरी जो फिल्म हम कह सकते हैं ईटानगर में लगी है उसका नाम है जवानी तो इश्क होना है, ये एक कॉमेडी और रोमांटिक फिल्म है। तो दोस्तों, हमने जाना कि कौन कौन से फिल्म अभी लगी है, और अब आपको मैं अब जानकारी देना चाहूंगी कि अगले वीक में कौन कौन से फिल्म्स नई आने वाली हैं। तो सबसे पहली जो फिल्म है जो कि 19 जून को आएगी उसका नाम है कॉकटेल 2, जो कि कॉमेडी, ड्रामा और रोमांटिक फिल्म है। उसके बाद माँ इंती बागाराम, जो कि एक्शन, कॉमेडी, फैमिली थ्रिलर फिल्म है। और अगले फिल्म जो कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए है जिसका नाम है टॉय स्टोरी 5, जिसका बच्चों को बहुत टाइम से था इंतजार, जो कि एडवेंचर, एनिमेशन और कॉमेडी से भरपूर है। उसके बाद 19 जून को ही आ रही है एक फिल्म कॉलोनी, जो एक्शन, हॉरर, साईफाई और थ्रिलर सबका मिक्स है। अगली जो फिल्म है उसका नाम है गबर कुंड, जो कि एक्शन, एडवेंचर और सस्पेंस जिसमें से फुल ऑन है। अगली जो फिल्म है उसका नाम है चिन्ना चिन्ने असई, जो कि ड्रामा और रोमांटिक फिल्म है। और उसके बाद जो अगली फिल्म है इसका नाम है, वो भी 19 जून को आ रही है, फ्यूरियस, ये एक्शन और थ्रिलर फिल्म है। उसके बाद बालन द बॉय, जो कि ड्रामा, मिस्ट्री से भरी हुई है। और अगली जो खबर है जो कि एक बायोग्राफी ड्रामा बेस्ड फिल्म है जिसका नाम है द वॉइस ऑफ हिंद रजब, ये भी 19 जून को आएगी। और आखिरी जो फिल्म उत्तेजना द फायर ये भी 19 जून को आ रही है। ड्रामा, रोमांटिक और थ्रिलर फिल्म। अब जानते हैं उससे भी अगले फ्राइडे यानी कि 26 जून को कौन कौन सी फिल्म आ रही है। तो जिनको बेसब्री से इंतजार था, कॉमेडी एक्शन फिल्म अक्षय कुमार और बहुत सारे एक्टर्स की, इसका नाम है वेलकम टू द जंगल। और उसके बाद सुपर गर्ल, जो कि एक्शन, एडवेंचर और साईफाई से भरपूर है। अगली जो फिल्म है द इनवाइट, वो भी कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर है। देन क्राइम और थ्रिलर से भरपूर फिल्म नव्य चक्रा आ रही है। और फिर एक बार बच्चों के पसंदीदा फिल्म मिनियोनीज एंड मॉन्स्टर्स, जो कि एडवेंचर, एनिमेशन और कॉमेडी से भरपूर आ रही है 2 जुलाई को। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको एक और खूबसूरत गीत सुनाती हूँ जिसे गाया है जुबिन नौटियाल ने। और इस खूबसूरत गीत के बोल हैं मेरी आशिक आशिकी। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: श्रोतों दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और खूबसूरत गीत, जिसे लिया गया है फिल्म एक दीवाने की दीवानियत से। तो चलिए, इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: श्रोता दोस्तों, अभी आप सब बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। तो दोस्तों, आज हमने फिल्मी गपशप में बहुत सारे फिल्मों के बारे में जाना कि कौन कौन से फिल्में हो रही हैं रिलीज। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायण

0: मदन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्योहार बताया। उन्होंने कहा कि यह त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। कजाकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल की कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At the community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Our correspondent has the details.
2: Prime Minister Narendra Modi will today join French President Emmanuel Macron for the inauguration of Bharat Innovates at the Palace des Expositions in Nice. The event will showcase India's startup and innovation ecosystem with around 120 Indian startups presenting innovations to global investors and technology leaders. Following the event, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks at Villa Kirloos. The meeting will be the first since India and France elevated their ties to a special global strategic partnership earlier this year. The two leaders are expected to discuss cooperation in defense, technology, trade and innovation, besides exchanging views on key regional and global development. The Prime Minister will later depart for Slovakia for the second leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships and a range of global security challenges. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude over the greetings of Serbian President Aleksandar Vučić over becoming India's longest serving Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi thanked President Vučić for his heartfelt greetings. He also fondly recalled the Serbian President's recent visit to India and the productive discussions held during the visit. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, ISRO chief explained that Chandrayaan 3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on the moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. President Draupadi Murmu has extended her greetings to the people of the country, particularly the people of Odisha, on the occasion of the harvest festival Rajya. In a social media post, the president described Rajya as a welcoming festival of the monsoon season that is celebrated to honor the earth, motherhood and the clouds. On the occasion of World Blood Donor Day today, Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has called upon the people to come forward and voluntarily donate blood to help save lives. In a social media post, Mr. Nadda said that blood donation is one of the simplest yet most effective ways to give someone a second chance at life. U.S. President Donald Trump has said a deal to end the war with Iran will be signed today and that the strategic Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. He made this announcement on a social media post. At the same time, Trump kept the threat of fresh attacks dangling if the deal failed to pan out as expected. He said, hopefully this process will work out. If it doesn't, they have the ultimate alternative. Meanwhile, Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghaei has said the signing of any agreement is unlikely to take place immediately, stating that it will not happen today and may take place in the coming days. In the ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup 2026, Scotland ended a 28-year drought after beating Haiti 1-0 in their Group C clash at Gillette Stadium in Massachusetts today. And that is the end of this news bulletin.
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर कारून FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे पूनम। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में, जहां हम करते हैं आपकी सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट को पूरा। तो दोस्तों, चलिए लेते हैं आज का पहला मैसेज, जो कि लिखते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी। आई एम गुमे माई बागरा, जो कि हिगी बागरा से हैं, और ये लिख रहे हैं कि ये और इनके पति रोज

हमारे जो अरुण एफएम के कार्यक्रम हैं और रेडियो ऑन डिमांड हैं उनको सुनते हैं, भले ही ये मैसेज करें या ना करें। तो आज इन दोनों ने मिलकर एक फरमाइश लेकर आए हैं, ये सुनना चाहते हैं गीत मैं जिस दिन भुला दूं तेरे प्यार को, जिसके गायक कलाकार हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर, जिसे लिया गया है फिल्म पुलिस पब्लिक से। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें ये मैसेज किया माए बागरा और हिगी बागरा। आप हमें ऐसे ही मैसेजेस करते रहिए और हमें हमारे साथ जुड़े रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आपका जो पसंदीदा रिक्वेस्ट है उस गीत को सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: श्रोतों दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगला मैसेज, जो कि है हर्षित गोस्वामी, जो कि बोखात आसाम से हैं। ये सुनना चाहते हैं फिल्म जादूगरी। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित जी, आपने हमें मैसेज किया और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। उम्मीद करते हैं आप अपनी जो पसंद है, जो रिक्वेस्ट को अभी भी सुन रहे होंगे और इस बेहतरीन रिक्वेस्ट का आनंद लेंगे हम सभी आपके साथ। तो दोस्तों बने रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और सुनिए इस बेहतरीन रिक्वेस्ट, जिसका नाम है जादूगरी।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: श्रोतों दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं अगले मैसेज की ओर। अगले रिक्वेस्ट हमें की है रुचिता ने, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। ये सुनना चाहती हैं पालकी में होके सवार चली रे गीत को। तो बहुत बहुत धन्यवाद रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद रुचिता जी, आपने हमें मैसेज किया और आप हमारे साथ बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप हमें ऐसे ही रिक्वेस्ट भेजते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और सुनिए अभी आपकी बेहतरीन रिक्वेस्ट को।

0: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोतम दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट को करना, तो आप भेज सकते हैं हमें मैसेज 9436887808 पर। नंबर एक बार फिर से बताती हूँ, 9436887808 पर। तो दोस्तों, चलिए लेते हैं अगले रिक्वेस्ट। तो ये जो रिक्वेस्टर हैं, ये अननोन हैं, जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन ये सुनना चाहते हैं पल पल दिल के पास गीत को। किशोर कुमार ने इस बेहतरीन गीत को गाया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारे अननोन रिक्वेस्टर की, प्लीज अपना नाम जरूर लिख के भेजिए, ताकि हम एक दूसरे से और अच्छे से कनेक्ट कर सकें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें रिक्वेस्ट किया और हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो चलिए इस बेहतरीन रिक्वेस्ट का आनंद लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: श्रोताओं दोस्तों आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का। तो चलिए लेते हैं अगला मैसेज जो कि हमें भेजा है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। इनका नाम है सुरप्रीत। ये हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बेहतरीन गीत जिसका नाम है जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। इस बेहतरीन गीत को ये सुनना चाहते हैं। इस बेहतरीन गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और इसे लिया गया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरप्रीत जी, आप हमसे जुड़े और हमें आपने इतने बेहतरीन गीत को रिक्वेस्ट किया। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ को। और अभी आप सुनेंगे हम सबके साथ आपकी बेहतरीन रिक्वेस्ट को सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
3: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का, जिस पे आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 9436887808 पर, 9436887808 पर। तो दोस्तों चलिए लेते हैं अगला मैसेज, जो कि हमें भेजा है शुभे बिरला ने, जो कि दिल्ली से हैं। ये सुनना चाहते हैं कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया गीत को, जो लिया गया है फिल्म नदिया के पार से, जिसे गाया है हेमलता और जसपाल सिंह ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभे बिरला जी, आपने हमें ये रिक्वेस्ट किया और आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए इस बेहतरीन रिक्वेस्ट को सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: श्रोता दोस्तों, आप बने हुए थे हमारे साथ कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। उम्मीद है हमने आप श्रोताओं को भरपूर एंटरटेन किया होगा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। एफएम के कार्यक्रम जारी रहेंगे और आपके आगे के सफर के लिए जुड़ने वाले हैं आरजे दंपक। आज की पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक एलताली तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। तो अब मुझे यानी अपनी आरजे साथी पूनम को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज अपनी रेडियो साथी आरजे दंपक के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मॉनसून के स्वागत का त्योहार बताया। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। फीफा विश्व कप में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया। जॉन मैकगिन के पहले हाफ में किए गए गोल की बदौलत स्कॉटलैंड ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will later travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude over the greetings of Serbian President to him over becoming India's longest-serving Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi thanked President Vucic for his heartfelt greetings. He also fondly recalled the Serbian President's recent visit to India and the productive discussions held during the visit. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, ISRO chief explained that Chandrayaan 3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. India's healthcare sector has witnessed a transformative change over the past decade under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with a strong focus on ensuring accessible and affordable healthcare for all citizens. In a social media post today, Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that the government's flagship healthcare initiatives have significantly strengthened the country's health infrastructure and advanced the vision of a Swasth Bharat. The minister highlighted that Ayushman Bharat scheme has provided cashless health coverage to millions of beneficiaries across the country and has now been extended to senior citizens as well. Mr. Gadkari also noted that Jan Aushadhi Kendras have been made quality medicines available at affordable prices, helping reduce out-of-pocket healthcare expenditure for people. On the occasion of World Blood Donor Day today, Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has called upon the people to come forward and voluntarily donate.

शादाब, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और बहुत बहुत धन्यवाद आरजे पूनम जी, मुझे आगे के कारोबार और आप सभी के साथ जुड़ने का मौका प्रदान किया आपने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो रहे हैं। इसी के साथ अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा। इससे पहले पहली प्रसारण सभा में आप जुड़े हुए थे आरजे पूनम जी के साथ, और अब आप जुड़े हुए हैं आरजे दांपा यानी मेरे साथ। हमारी दूसरी प्रसारण सभा में साथ दे रहे हैं प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता एचएम भूषण। तो अब चलिए श्रोता, दूसरी प्रसारण सभा की आरंभ करते हुए पेश कार्यक्रम फिल्मी लहर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी लहर में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए देर किस बात की पेश है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म सनम तेरी कसम से, और गीत के बोल है तेरा चेहरा, और इस गीत का आवाज दी है हिमेश रेशमिया और अजीत सिंह ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत मेट्रोस और कनिका कपूर की आवाज में। आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम फिल्मी लहर में और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत दबंग फिल्म से। गीत के बोल है चोरी किया रे और इस गीत को आवाज दी है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। अब और अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलक एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत दंग की फिल्म से। गीत के बोल है लुट पुट गया, और इस गीत को गाया है अजीत सिंह ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म चांदी चौक तो चाइना से, और इस गीत को आवाज दी है शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल ने। अब आपके लिए पेश कर रहे हैं कार्यक्रम में गीत ब्रेक के बाद फिल्म से गीत के बोल है दूरियां भी है जरूरी, और इस गीत को आवाज दी है मोनिका डोगरा, विशाल ददलानी और विशाल शेखर ने।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होते हैं और अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाई और बहनों का गीत माला।

दोस्तों कार्यक्रम गीतमाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, इस सेगमेंट पर हम गाने प्ले करते हैं हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए। तो पेश है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर से गीत के बोल है जय हो, और इस गीत को गाया है सुखविंदर सिंह ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत कैलाश खेर की आवाज में फिल्म चांदनी चौक टू चाइना से। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम पर और मैं हूं आपके आज साथी दांपा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मारा। तो चलिए श्रोताओं कार्यक्रम को और आगे ले चलते हुए पेश कर रहे हैं आपके लिए गीत परदेश फिल्म से। गीत के बोल है आई लव माई इंडिया और इस गीत को आवाज दी है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत संगर एहसान लॉय और सुखविंदर सिंह की आवाज में फिल्म बाग मिल्खा बाग से। और अब आपके लिए पेश है गीत ट्रैफिक फिल्म से। गीत के बोल है नेकी की राहो और इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और मिथुन ने।

0: दोस्तों आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत माला यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक। दोस्तों कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, जहां आप सुन पाएंगे वो सुनहरे गाने 60s टू 80s के। जी हां दोस्तों, इस सेगमेंट में मैं आपको ले चलूंगी उन पुरानी यादों की सफर की ओर, वो गाने जो आज भी जिंदा है और खास है। तो पेश कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म कर्ज से। गीत के बोल है दर्द दिल दर्द जिगर।

दोस्तों को बता दो कि इस गीत का आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। और इस गीत की म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने और लिरिक्स लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

दोस्तों, पुराने गाने आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। उस दौर में ऑटो ट्यून नहीं था, असली आवाज और कॉम्पोजिशन ही जान थी। पुराने गीतों के कलाकारों की अगर बात करें तो उनकी अंदाज ही अलग थी। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, महेंद्र, उनकी आवाजों में एक अलग ही रूहानियत होती थी। दोस्तों, हर गाना फिल्म की स्टोरी और इमोशंस को आगे बढ़ाता था। सिर्फ डांस नंबर नहीं, साफ रोमांस, नाजुक अदाएं और मोहब्बत को नजाकत और इज्जत के साथ दिखाया जाता था। इसीलिए पुराने गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक याद और एहसास लगते हैं। तो चलिए आप

हम भी खो जाते हैं उन हसीन सफर में जहां दिलों से बात होती है फिल्मी अंदाज में। दोस्तों आ रहे हो पुराने सफर में, आपके लिए अब पेश कर रहे हैं गीत लव स्टोरी फिल्म से, और इस गीत को आवाज दी है अमित कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: Dat zou zijn redding ik de chansen ze. उषा मंगेशकर किशोर कुमार आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत और आप सुन रहे हैं इस वक्त मेरे साथ कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक हम लौटेंगे इससे ब्रेक के बाद
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से गीत के बोल है कांचीरे कांचीरे और इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने

0: 12 गीत के साथ ही पुराने गानों का सिलसिला यानी हिंदी क्लासिक म्यूजिक यहीं पर समाप्त होते हैं।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions.
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और पेश है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म बिल्लो से और गीत के बोल है खुदाया खेर और इस गीत को आवाज दी है सोहम चक्रवर्ती आकृति कक्कर और मोनाली ने।

0: The headlines. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France, to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership to be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in next 2 to 3 days. Over 5,000 Bharatnatyam dancers create Guinness World Record for the largest Bharatnatyam dance lesson in Colombo. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Innovates in Nice in a short while from now, alongside French President Emmanuel Macron. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation will bring together more than 120 Indian startups, global investors, technology leaders and entrepreneurs, showcasing India's rapidly expanding innovation ecosystem. Later in the day, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks to review the progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss key regional and global issues. More from our correspondent.
1: Prime Minister Narendra Modi and President Emmanuel Macron will jointly launch Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, investors and technology leaders from across the world. The event is expected to showcase India's growing strengths in innovation, entrepreneurship and emerging technologies. Later, the two leaders will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss ways to further enhance cooperation in areas including technology, trade and defense. Following the talks and a luncheon hosted by President Macron, Prime Minister Modi will leave for Slovakia on the next leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
0: Talking to Akashvani, co-founder of Sarvam AI expressed his appreciation for the first-of-its-kind initiative by the government of India to bring a large number of startups onto a single arena, giving them excellent opportunities and exposure.
2: My name is Vivek Raghavan. I am the co-founder of Sarvam AI. This is actually a very exciting event. I think for the first time, the government of India has made an initiative to bring so many startups here to make them well-known in France. I think this is a first-of-its-kind initiative.
0: Co-founder of Quantfluence, Aditi Vaidya, highlighted how the maiden edition of Bharat Innovates was giving startups like theirs a platform to meet investors, researchers, as well as potential partners and customers.
3: I'm here at the Bharat Innovates 2026 maiden edition. I'm Aditi Vaidya. I'm a co-founder at Quantfluence. At Quantfluence, we have been building India's first scalable photonic quantum computer from grounds up, scalable to 1 million qubits. And while our quantum computer evolves, we have also built this quantum-inspired hardware.
0: Chetan from Dhruv Space explained platform like Bharat Innovates allows startups to place themselves before a global market, lending greater credibility to the company as well as to India's startup ecosystem as a whole.
4: This is Chetan from Dhruva Space. Dhruva Space is a satellite manufacturing company based out of Hyderabad. We specialize in satellite full stack solutions. That means building a satellite like this. We build anywhere from 10 kg to 50 kg to 150 kg satellites.
0: Traditional Slovak hospitality will be accorded to Prime Minister Narendra Modi in Bratislava this evening. More from our correspondent in Bratislava.
5: Prime Minister Narendra Modi will be given a traditional welcome with bread and stall upon his arrival in Bratislava. According to Slovak culture, guests and dignitaries are greeted with a loaf of bread and a small dish of salt. Bread represents prosperity, while salt symbolizes value, friendship and protection. A renowned children's folk group from Myava region of Slovakia will perform a traditional Slovak dance to welcome the Prime Minister. A performance of Vande Mataram by the Luknisa ensemble will be another highlight of the arrival ceremony in Bratislava. Midi M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava in Slovak Republic.
0: Prime Minister Narendra Modi has said that India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the nation with the world's largest healthcare program, Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable. He said that efforts like PM Bharatiya Janaushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The Prime Minister expressed hope that the government will keep building on the ground covered so far in order to build a healthy India. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said that India's healthcare sector has witnessed a transformative change over the past decade under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with a strong focus on ensuring accessible and affordable healthcare for all citizens. In a social media post today, Mr. Gadkari said government's flagship healthcare initiatives have significantly strengthened the country's health infrastructure and advanced the vision of a Swasth Bharat. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal also emphasized that India today leads several of the world's largest healthcare initiatives. Union Minister of Minority Affairs Kiran Rijiju has said that the life, quality and overall situation of the minority communities in the country have improved significantly over the past 12 years. In an interview with the National Daily, Mr. Rijiju noted that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the vision of Sabka Saath, Sabka Vikas has ensured that the benefits of development reach every section of the society.
6: Minorities are better in India. 12 years after Modi ji has become the Prime Minister, the life, the quality, the overall situation of minority communities have become better because life of every Indian has become better.
0: In Jharkhand, at least 7 people, including 3 women and a 10-year-old boy, have been killed in separate lightning strike incidents across the state over the past 24 hours. Police said 2 people lost their lives in Ranchi and 2 people were killed in Garhwa district. The other fatalities were reported from Chatra, Giridi and Saraikela Kharsawan districts. Authorities have sent the bodies for post-mortem examination. The Criminal Investigation Department, CID, is interrogating Trinamool Congress MP Abhishek Bandyopadhyay for his alleged involvement in signature forgery case of party MLAs. Today, Abhishek arrived at the CID headquarters, Bhavani Bhavan, in Kolkata. The CID is investigating the case following the Calcutta High Court order. It is alleged that Abhishek Bandyopadhyay forged signatures of the newly elected MLAs of Trinamool Congress after the Vidhan Sabha election in West Bengal for selection of leader of opposition in the assembly. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has informed that Karnataka has received 5 times more central tax devolution as against the allocation during the UPA tenure. She was addressing the Vikasit Bharat Sankalp Samavesh in Bengaluru today. She refuted the allegations of Congress-led state government in Karnataka that Karnataka is deprived of central allocations. The government has appointed noted economist Professor Alok N. Sharma as the chairman of a high-level technical expert committee on labor statistics. The committee has been constituted to strengthen and periodically review labor market indicators and assess the evolving structure of India's labor market. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. A historic cultural milestone was achieved in Colombo today as more than 5,000 Bharatanatyam dancers performed together, clinching the Guinness World Record for the largest Bharatanatyam dance lesson. More from our correspondent.
7: In a spectacular celebration of shared culture and unity, more than 5,000 Bharatanatyam dancers came together at Colombo's Goldfields Green today, creating history with the world's largest Bharatanatyam dance lesson. The Guinness World Record citation was presented following the performance, with Indian High Commissioner Santosh Jha receiving the certificate on behalf of the performers and organizers. The breathtaking performance transformed the iconic seaside venue into a vibrant showcase of tradition, discipline and cultural excellence. The event turned out to be a landmark moment for classical dance and a proud tribute to the enduring cultural bonds between India and Sri Lanka. Ahmed Muin Farooqi, Akashwani News, Colombo.
0: In Odisha, the 3-day Raja festival began today with a celebration of Pahili Raja, ushering in the onset of the monsoon and the Odia month of Ashada. The festival symbolizes reverence for Mother Earth and reflects the state's rich agrarian traditions. More in this report.
8: The Raja festival has begun across Odisha from today with the observance of Pahili Raja, one of the state's most cherished cultural celebrations. Raja honors womanhood and symbolizes the fertility and regenerative cycle of Mother Earth. The festival derives its name from Rajaswala, reflecting the belief that the earth, like women, undergoes a period of rest and rejuvenation. Consequently, agricultural activities have remained suspended during this period. Women and girls are at the heart of the festivities. They are adorned in new attire, relieved from household chores, and seen participating in traditional customs including swings, folk songs and community celebrations. Homes across Odisha are resonating with the aroma of festive delicacies such as Poda Pitha, Arisa Pitha, Chakuli Pitha and the popular Raja Pan, which are being shared with family, neighbors and friends. Raja is a unique celebration of womanhood and Odisha's enduring reverence for nature and its life-sustaining processes. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar.
0: Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they've collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan-3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on Moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the Moon for up to 200 days. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during the next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The India Meteorological Department, IMD, has forecast favorable conditions for further advancement of southwest monsoon into remaining parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, some more parts of Odisha and some parts of South Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. The IMD predicted heavy rainfall over parts of the northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The weather agency said that thunder squall conditions are likely to prevail over Madhya Pradesh, Telangana and West Rajasthan till tomorrow. It added that Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh, Jharkhand, Maharashtra, Uttarakhand, Interior Karnataka and West Bengal will witness thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds today. Moving on to sports news, first the news from FIFA. Australia made a dream start to their FIFA World Cup 2026 campaign, defeating Turkey 2-0 in their Group D opener. Goals from Nestori Ayankunda and Connor Metcalf capped two clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organized throughout the contest, frustrating their opponents and capitalizing on their chances. For Turkey, competing in their first World Cup in 24 years, the much-anticipated return to football's biggest stage ended in disappointment. Earlier in the day, Scotland moved to the top of Group C with a hard-fought 1-0 victory over Haiti in their Group C opener in Massachusetts. With this, Scotland ended a 28-year wait for a World Cup victory. And in ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in a Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. India time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership will be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
9: Namaskar, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
10: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
9: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
11: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेंबल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
9: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
9: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहिली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
12: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
9: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: श्रोता अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों समाचारों के बाद अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। दोस्तों 90s के गाने सीधे दिल पे लगते हैं। अगर 90s की बात करें तो 90s के गीत सिंपल लिरिक्स और गहरे एहसास से जुड़े हुए होते हैं, ना ज्यादा शोर ना हैवी वर्ड्स। 90s के कलाकारों के आवाजों का मिलन आज भी जिंदा है, जैसे कुमार शानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति। ऐसी आवाजें जो टाइम के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और गहरी लगती है। जी हाँ, इसी के साथ कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में पेश कर रहे हैं पहला गीत फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से, और गीत के बोल है रुक जा और दिल दीवानी, और इस गीत को गाया है उदित नारायण ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत बाजीगर फिल्म से अनुमलिक की आवाज में। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। हम लौटेंगे और इस ब्रेक के बाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। और कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत दीवाना फिल्म से। गीत के बोल है सोचेंगे तुम्हें प्यार, और इस गीत को आवाज दी है कुमार शानू और नदीम शबानी।

दोस्तों दीवाना फिल्म में शाहरुख खान की पहली रिलीज हुई हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म से उन्हें व्यापक पहचान मिली। फिल्म में ऋषि कपूर ने रवि का किरदार निभाया था, जबकि शाहरुख खान ने राजा की भूमिका निभाई थी। कहानी में रवि के गायब हो जाने के बाद राजा का प्रवेश होता है, जिससे खटानक नया मोड़ लेता है। फिल्म की नायिका थी दिव्या भारती, जिनकी जोड़ी दोनों अभिनेताओं के साथ दिखाई गई। दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही और शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत राजा हिंदुस्तानी फिल्म से और अलका याग्निक, उदित नारायण और सपना अवस्थी की आवाजों में। आपको बता दो कि इसी के साथ ये कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस और उसके तुरंत बाद मिश्री कमान और ताई कामती श्रोताओं का कार्यक्रम।

0: chom nang akhing nam nali na studio mai chicken ma va pha point ne thon si cha hang manai kham te kham ti ho tu khai mai sat yo ho
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मिश्री कमाल और थैकमती श्रोताओं का कार्यक्रम ये आकाशवाणी का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्त प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं कि दिल है तुम्हारा फिल्म से गीत के बोल है दिल लगा लिया और इस गीत को आवाज दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

0: دوستان سن رہے تھے یکی دے سنی دی چوہان کی آواز میں فلم نیو یارک سے. آپ کو بتا دوں کہ اب فلمی گانوں سے تھوڑی بریک لیتے ہوئے اب سے کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے وان چوشوتاؤں کا سماچار.
1: ایجا آکاشوانی ایتانگر انی جون لے منی بن آلی ترک دیو بار ای پوہاں سن آزم باج پونی منٹ مویک پیشم لکیم وان چو سائی کا پاں کپے پوہاں کا ہوا پاہی پھالے وان کا France ya Slovakia des ni to apon angka ke Prime Minister Narendra Modi ka de maja France des nice son kapana moma Modi e hama France des President Emmanuel Macron phaitam le Bharat innovates tu so hokada panto le hai angka G7 summit tu so thoma ang President Macron phai India here France des ni e aso asai le mokasa pang bilateral homokosa tia chawan nu zu mokya ka ang pho mo vanaze ai boma prime minister modi hamakang e slovak leadership tham phai bilateral zangman ka zele apong sau ang slovakia des to kai ka homa ajang ba india here france des ni ba homokosa hosham ija zang pho hobang ma e ta special global strategic partnership partnership ang zingajawle achan adandau ke phai ma india here france des ni ba ma haya meeting tu so hawang tham ang pa meeting ang achang la satai indian space research organization isro hotam chairman v narayanan e hom isro hotam e let nu ko tokya zangkong freezing weather e lunar lander to nakpo nakpak angkya hanpak mata advanced artificial heating system zingejau le alai adan ang department of atomic energy tham phai asham le mokasa ang tia phan dawa le vankya bo ma india e lenu kho to adan kya chandrayaan 3 angkya lander vikram zanghan energy makhang aham kya changkole let nu kho to ni ban ali ve hozan mangole swak puchanga theba atha hom atomic energy department tham phai asham ankya ezing ankya ta lunar lander let nu kho to ni ho ani ta ku jo hozan mangole swak ankya chang tai pu le van le isro tham chairman narayanan aja ka mani bangaluru honoi ma angot aso kya csir rise conclave tu so van kya jang van ka se ma ngai van le Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General Retired KT Parnaik Ani World Blood Donor Day Ni Man Ma Aji Donation Ko Otun Khanak Tham Voluntary Blood Donors Tham Achok Asan Hu Kya Ka Hole Bo Ma Governor E Talakya Kakma Lakshi Tham Zan Sang Pan Emergency Pong Apong Asau Puzu Ma Halakya Kang Mi Tham To Aji Ko Otun La Azan Kya Blood Donors Tham Vanha Thay Ba mi epala chising avai silent naumai tham changte pu le van le kahoma ajang ba aja kazang pu mahaja world blood donor day ni them ang one drop of humanity give blood save lives le tham le arunachal pradesh agriculture here horticulture minister gabriel d wangsu e northeastern regional agricultural marketing corporation limited nera MAC hotham Arunachal Pradesh hanpak ma angko kya proposals to hu ha kya ka to puzu ma van kya zang van ka se ma scientific data driven zangmot man zai project po zinge jo ham angkya mot bo ma haja region specific assessment hon le ti zinge jo angkya mot le van le ka ma ajang bhaja proposals ma panjum zongjak processing fruit park and plantation expansion projects gusi here sitek mushroom ha ponsoi value chain development boma state ma large cardamom elaichi hanpak mata e auction center jingejo angkya ka angau pho ha ka omle taile boma wangsu a official sam mushroom here elaichi kai thom manjai hanpak ma na asu ol kya honui pho pae kamle alai adan ankya a haya model cluster ang zingajau la achang hai leban kya bo ma zamot manjai mitam income here state horticulture zamot manjai sector achan amai angkya homokhosa juto government pangnulam ma jo chon so phong थोमनोन ले फा अंक्यालचु वंदे याचुले होनो जंग एमले तोको तातुंग हिया कैपान्योर मिशन प्लान सीईओ विजया एमजे नी ए मनी कैपान्योर डिस्ट्रिक्ट मा नौसम लानु नांगनो सेक्टर होमोको सजु आचन आमाई पुकु मा अंगजिंगे जौ केता एमओयू का फनलाइन गक तो इकलव्या होथम सीईओ अनिल दीपक फै टिपसिंग लाइ जादवा काहोमा अजंग बाजा एमओयू तो टिपसिंग लाइ जाक्या डिस्ट्रिक्ट मक्या गवर्नमेंट स्कूल फो तो लाइनोट नांगनोट होवान अमाइक्या बो मा नौसम अंग लानुंगानुत अपॉर्चुनिटीज अचेन अदनक्या नु चितेले तम मैले कोटोन अंक्या हानपकमा ओ लजीले जिंक्या कैपा निर्मिशन प्लान 2040 होमकसत काट होन खा मकेता कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर एजुकेशन सीएपीई काट होन अंक्यता मोथो चेन मा मोकसाक्या चंगले काहो इवे
0: दोस्तों भी आप सुन रहे थे वांछ और श्रोताओं का समाचार। वांछ श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी अपने आरजे दांबा के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अब चलिए समाचारों के बाद हम फिर लौट आते हैं फिल्मी गानों के सफर में और फिल्मी गानों में आपके लिए पेश कर रहे हैं इस अक्षय फिल्म से गीत चौकरा जवारे और इस गीत को आवाज दी है सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत अजीज कौर राघव और तनिष बख्शी की आवाज में। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं करण औजला की आवाज में गीत तौबा तौबा।

0: दोस्तों इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ईद उमेश पेशताओं का समाचार।
1: वांगचो श्रोताओ का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं ईद उमेश में कार्यक्रम।
2: एचा आकाशवाणी ईटानगर थालापुची जिहोपी इनामले निमचनी इतंची ईद उमेश में प्रोग्राम में अहतांदो आहोची अहोजी इतंचा होला के जी जुजुम्बे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में अध्यवताची फ्रांस ने स्लोवाकिया एचा नेशन का निमा मेलोचिम बामा बामा या फ्रांस मची नाइसमा खमो बखा अमा इतनी मिस्टर मोदी में फ्रांस मची प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन को चौगाई बने इतनी नाइस मने भारत इनोवेट्स लने इंडिया मची मानलो न्यू स्टार्टअप आलम्बो में इनोवेशन शोकेस एकगा आयो पहागा ने एकशा अरुंदा बायलेटरल चिचागा दोने इगाव जी सेवन समिट चिपोमा अब चिचागा ही बखा अलो दा प्राइम मिनिस्टर मोदी में अनाया स्लोवाकिया मेलो अगुई बने स्लोवाकिया ची लीडर्स आलम्बो को चौगा अलो दा फ्रांस मा इंडिया मची इमो जी आलम्बो में फ्रांस मची अहोईगा होटल नेगरोस्को मने छेवनो तगा मा चौगा इबाव खा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आईएसआरओ मची चेयरमैन

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, समाचारों के बाद अब आपके लिए पेश कर रहे हैं फिल्मी गाने। और फिल्मी गानों में सबसे पहला गीत आपके लिए पेश कर रहे हैं फिल्म सुल्तान से। गीत के बोल है बुलेया और इस गीत को गाया है पापोन ने।

तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसी गीत के साथ ही अब वक्त हो चला है हमारे दूसरे प्रसारण सभा के अंतिम मोड़ पर और वक्त हो चला है मेरे आपसे अलविदा कहने का। पर जाने से पहले आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार और आगे के सफर में आपसे जुड़ेंगे आज कानिक चिक जी और हमारे से दूसरे प्रसारण सभा में साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता एच एम भूषण। रब मुझे यानी अपना आरजे साथी दंपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

बी नारायणन रोग द बेंगलुरु नंग सीएसआईआर आरआईएससी कॉन्क्लेव नंग मसो फनरो सोलर एनर्जी म थवांग तो चंद्रयान थ्री लैंडर विक्रम र जपोई नंग रंगसर बलई दे कम सोमरुक तो अरो मचो इसरो र एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट जम करुम रो मानची लूनर लैंडर प जपोई नंग रंग रचन नहीं तक तोंगरुक चिंगो फान तो अरो पर र निहई मिशन नंग अचा तक जपोई नंग लूनर एक्सप्लोरेशन प तगियांग रुक चिंगो रोक तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केती पटनायक र वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सकान नंग मचुसा वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हेंग मरन तहु द प्रजु गवर्नर र फान तनांग ब्लड डोनर्स हेंग र तहै ब्लड डोनेट कुरी रो पर र असा तेक बली बाय महें खु थलुन रंगो फान द अरुणाचल प्रदेश वंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर गैब्रियल डी वांगसू र नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड र प्रोपोजल कुकुत प लामराउ साइंटिफिक डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जंगरंग रारंगो रोक द अरोपर प्रोपोजल नंग इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग फूड फ्रूट पार्क प्लांटेशन एक्सपांशन प्रोजेक्ट गुसी नई सुताके मशरूम पसो लोक म वैल्यू चेन डेवलपमेंट म पर म स्टेट वंग इलायची म ई ऑक्शन सेंटर खेप म पर प्रोपोजल नंग लाम तंगो रोक द अरोपर वसडो प्रोजेक्ट प्लान ताम प ऑथेंटिक फील्ड डेटा नई रीजन स्पेसिफिक असेसमेंट मा म जंगरंग रारंग रो स्टेट वंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर गैब्रियल डी वांगसूर रोक द पर म मशरूम नई अजुंग इलायची खाई म अरो पर प मॉडल क्लस्टर तगयांग म रखाक अहु लोकेशन रायकाट म एग्रीकल्चर मिनिस्टर र ऑफिशियल हे मरुक त अरो पर काम म गवर्नमेंट र फुल सपोर्ट कुची मराउ काखाम कुत केई पान्योर डिस्ट्रिक्ट नंग एजुकेशन सेक्टर काउ अमाय तगयांग म मनै याचुली एमएलए तोको तातुंग नई केई पान्योर मिशन प्लान सीईओ विजयन एमजे र एकलव्य सीईओ अनिल दीपक जम्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू सही तंग रोक गवर्नमेंट स्कूल ताम नंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प अमाय तगयांग म लामराउ केई पान्योर मिशन प्लान 2040 अंडर म कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर एजुकेशन केप मा म पर पार्टनरशिप प थाकत अर उपर इनिशिएटिव अंडर म मछो जिलिंग रंग मछेत नई रंग तक तारीख छिजु टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम तगयांग अरो ट्रेन आंगनबाड़ी वर्कर्स हेंग म ओनर कु म मछो जिलिंग रंग सही तारीख छिजु स्पेशल प्रोग्राम तगयांग तंगो रूप त अरो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर नंग मनई यूनाइटेड स्टेट वंग मिडलाइफ स्टेडियम नंग ब्राजील र ग्रुप सी मैच नंग मोरक्को जम्म अफंग मैच तो तनंग ड्रो जंग तो ब्राजील फंग कौम वेनेसियस जूनियर र कसम से नई मिनट नंग गोल कुरो मैच पर ड्रो तो यंग तो रुंग रंग इतना नंग थुम रो

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तांगसा बोली में समाचार। तांगसा श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी ईटानगर केंद्र का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हर मुलाकात कुछ कहती है, हर आवाज कुछ महसूस कराती है, और जब बात हो दिल से दिल की तो वो रिश्ता हमेशा के लिए बन जाता है। हेलो, नमस्कार एंड गुड इवनिंग डियर लिसनर्स, आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की तीसरी प्रसारण सभा में। दोस्तों, आपको बता दूं, दूसरी प्रसारण सभा में आप बने हुए थे आरजे दंपक के साथ और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त गिचिक कनिक, जो आगे के कार्यक्रमों के सफर में आपके संग बने रहेगी।

0: श्रोता दोस्तों, आपको बता दूं इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक दीतांजन तथा तकनीकी अभियंता पीवी ज्योरी। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

डियर लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का गुड इवनिंग ईटानगर कार्यक्रम में। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मिलेंगे आपको संगीत का रंग और यूजफुल जानकारी भी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस शाम को एक प्यारे से गाने के साथ। गीत के बोल है दिल है छोटा सा, जिसे गाया है मिनमिनी ने, धुन दिया है AR रहमान ने और गीत के बोल लिखे है PK मिश्रा ने। आइए दोस्तों, गुड इवनिंग ईटानगर के आरंभ में आनंद लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

चलिए दोस्तों, इस गीत के बाद गुड इवनिंग ईटानगर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बारी है एक छोटी सी हेल्थ टिप की जो हम सब के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, जो आजकल हर तीसरे व्यक्ति को हो रहा है और इसका एक बड़ा रीजन है ज्यादा नमक खाना। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका बीपी हाई है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब सवाल ये है कि हाई बीपी होता क्यों है। तो दोस्तों सबसे कॉमन रीजन है ज्यादा नमक का इस्तेमाल करना। दूसरा रीजन है स्ट्रेस। आजकल की फास्ट लाइफ में स्ट्रेस काफी बढ़ गया है। और तीसरा रीजन है लैक ऑफ एक्सरसाइज। ऑयली फूड, अल्कोहल और स्मोकिंग भी इसके बड़े कारण बन सकते हैं। और दोस्तों हाई बीपी के नुकसान छोटे नहीं होते, ये दिल की बीमारी, किडनी डैमेज और स्ट्रोक तक का रिस्क बढ़ा देता है और जब तक कंट्रोल ना किया जाए ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बन सकता है।

लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, इसका गुड न्यूज ये है कि अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लें तो बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। अपने खाने में नमक की मात्रा कम कीजिए, जंक फूड

पिकल्स, पापड़, चिप्स और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड कीजिए। अपनी प्लेट में ज्यादा से ज्यादा सब्जी और फ्रूट्स लीजिए। और दोस्तों, दिन में कम से कम 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज अपना हैबिट बनाइए और स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहिए। और दोस्तों, सबसे जरूरी, अपना बीपी टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। याद रखिए दोस्तों, थोड़ा कम नमक, थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज और ज्यादा पॉजिटिव सोच, यही है सेहतमंद जिंदगी का फॉर्मूला। तो दोस्तों, ये थी आज के गुड इवनिंग ईटानगर कार्यक्रम का एक छोटा सा हेल्थ टिप। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त किची कनिक। आपसे फिर मुलाकात होगी इसे वक्त, इसी कार्यक्रम में, गुड इवनिंग ईटानगर में। चलिए दोस्तों, इसी के साथ गुड इवनिंग ईटानगर में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और खास नगमा।

0: दोस्तों इसी के साथ ही आपको बता दूं कि गुड इवनिंग ईटानगर कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही दोस्तों अब से कुछ ही पलों में बारी बारी से आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और 5 बजे आप सुन पाएंगे नोक्ते बोली में समाचार। इसके तुरंत बाद हम लौटेंगे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव लेकर। तब तक के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें और बने रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने आज नीस में पैलेस डेज एक्सपोजिशंस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदान दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने का अनुमान व्यक्त किया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने आज नीस में पैलेस डेज एक्सपोजिशंस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के तहत आयोजित इस प्रमुख कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के बेहतरीन इनोवेशन स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए हैं। इसमें 13 प्रमुख क्षेत्रों में इनोवेशन को प्रदर्शित किया गया है, जिनमें एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और बायोटेक्नोलॉजी शामिल है। इस मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि कई देश व्यापार और रणनीतिक सहयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक साझा विजन और समान हितों से प्रेरित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा ही स्थायी रिश्ता बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्य और भविष्य के प्रति समान दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश में बदलाव ला रही है और भविष्य को आकार दे रही है। सभा को संबोधित करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि भारत के बाहर इस पहल के पहले संस्करण की मेजबानी करना फ्रांस के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब भारत को न केवल अपार प्रतिभा वाले देश के रूप में बल्कि इनोवेशन करने वाले राष्ट्र और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली ताकत के रूप में भी देखती है। इस साल की शुरुआत में मुंबई में शुरू किए गए भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर का जिक्र करते हुए श्री मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस को भारत के प्रमुख स्टार्टअप्स और इनोवेस्टर्स को दुनिया के सामने लाने और इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स व टैलेंट नेटवर्क्स के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पार्टनर देश के तौर पर चुने जाने पर गर्व है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आजादी के बाद से भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करे जीवन बचाए। सुरक्षित रक्त के महत्व के बारे में जागरूकता लाने और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है और इसका दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। श्री गडकरी ने कहा कि ई संजीवनी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्वच्छ भारत मिशन जैसे पहले देश में समावेशी और सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य नागरिक ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। श्री नड्डा ने कहा कि देश में एम्स की संख्या एक से बढ़कर 23 हो गई है। वहीं ई संजीवनी, कोविन और यूविन जैसे प्लेटफॉर्म से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश के अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन स्तर और उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वास्थ्य आयु के लिए योग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्यभर की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 1,835 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की लागत वाली 53 विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ और उद्घाटन किया। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली और जल संसाधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी इन परियोजनाओं से इलाके में बुनियादी ढांचे के मजबूत होने और जन सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। उनसे शुक्रवार को भी इन मामले में पूछताछ की गई। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आंतरिक कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में आज गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल एक प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बातचीत के दौरान ईरान की ओर से जरूरत से ज्यादा रियायतें दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप डी के अपने पहले मैच में तुर्की को 2-0 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने नेस्टोरी इरंकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका ने के न्यू जर्सी में फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने हेती को 1-0 से हरा दिया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नारांग कोयांग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट Emmanuel Macron will jointly launch Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, investors and technology leaders from across the world. The event is expected to showcase India's growing strengths in innovation, entrepreneurship and emerging technologies. Later, the two leaders will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss ways to further enhance cooperation in areas including technology, trade and defense. Following the talks and luncheon hosted by President Macron, Prime Minister Modi will leave for Slovakia on the next leg of his visit. Prime Minister Narendra Modi has said that India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the nation with the world's largest healthcare program, Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable. He said that efforts like PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana have made medicines affordable. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said that India's healthcare sector has witnessed a transformative change over the past decade under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with a strong focus on ensuring accessible and affordable healthcare for all citizens. In a social

शाम धीरे धीरे अपना रंग बिखेर रही है, सड़कों पर रोशनियां जगमगा रही है और आपका सफर भी अब हसीन होने वाला है। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त किची कनिक और आप सुन रहे हैं इवनिंग ड्राइव कार्यक्रम, जहाँ हर मोड़ पर मिलते हैं बेहतरीन गीत और खूबसूरत एहसास। दोस्तों, जिंदगी की बागडोर के बीच कभी कभी एक प्यारा सा गाना ही पूरे दिन की थकान मिटा देता है। तो चलिए शाम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने के साथ जो प्यार, मस्ती और जवानी के रंगों से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं सोनू निगम की दिलकश आवाज में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का एक सुपरहिट गीत और गीत के बोल है दिल गया दिल गया। तो दोस्तों, गाने का मजा लीजिए, मुस्कुराइए और अपना सफर को सुरों के साथ और भी यादगार बनाइए। आइए एंजॉय करते हैं इस गीत को।

दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हम सब इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। लेकिन हर दिन के सिर्फ 10 या 15 मिनट अगर आप अपने लिए निकाल ले, चाहे एक छोटी सी वॉक हो, पसंदीदा गाना सुनना हो या बस खामोशी में कुछ पल बिताना हो, ये आपके मन को शांत और दिन को बेहतर बना सकता है। चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव बात के साथ आप एक और गीत सुनते हैं जो आपके दिल के जज्बातों को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है। फिल्म मन से उदित नारायण और अलका याग्निक की मधुर आवाजों में पेश है बेहद प्यारा सा गीत मेरा मन। चलिए दोस्तों, इस गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम शाम की महफिल का। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ बेहतरीन गीत और बातें करते हैं कुछ बॉलीवुड की फिल्मों की। चलिए दोस्तों, इसी के साथ पहला गीत सुनते हैं, जीले जरा।

दोस्तों एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए है। अगर आप अपना भविष्य को एक नई दिशा देना चाहते हैं और किसी टेक्निकल स्किल में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम हो सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने राज्य के विभिन्न इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITIs में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट की है। रोइंग, ताबा रिजो, दिरांग, बालिनोंग, यूपिया, मणिपोलंग वुमेन ITI, सगाली, लुमला, कानुबारी और पंगिंग के ITIs में अलग अलग ट्रेड्स में ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है। 14 साल या उससे अधिक उम्र की इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक ट्रेड्स के लिए चयन क्लास 10 के मार्क्स और नॉन मैट्रिक ट्रेड्स के लिए क्लास 8 के मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। एडमिशन प्रोसेस, अवेलेबल ट्रेड्स, एलिजिबिलिटी, फीस और अन्य जानकारी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करें। तो दोस्तों अगर आप स्किल डेवलपमेंट के जरिए अपना करियर को एक मजबूत पहचान देना चाहते हैं तो इस सुनहरे अवसर को लाभ उठाना ना भूलिए। ये सूचना डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी की गई है। चलिए इसी के साथ ही एक और फिल्म का गीत सुनते हैं, फिल्म कल हो ना हो से।

दोस्तों आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम शाम की महफिल पर और आप इन गीतों का आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं कुछ और खास नगमों को। और दोस्तों आपको बता दूं, कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि प्यार, दोस्ती और जिंदगी के खूबसूरत एहसासों को भी हमारे दिलों तक पहुंचाती है। ऐसी ही एक फिल्म है दिल तो पागल है, जिसमें राहुल, पूजा और निशा के बीच प्यार और किस्मत की एक दिलचस्प कहानी देखने को मिलती है। फिल्म का संदेश भी दोस्तों बहुत ही प्यारा है कि कहीं न कहीं हर किसी के लिए कोई न कोई जरूर बना होता है। और दोस्तों इसी खूबसूरत फिल्म से अब वक्त है एक ऐसे गीत का जो बचपन की मासूमियत और दोस्ती की मिठास को बेहद खूबसूरती से पेश करता है। सुनिए लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में फिल्म दिल तो पागल है का सुपरहिट ट्रैक कोई लड़की है। तो दोस्तों इस गाने का लुफ्त उठाइए और यादों की इस हसीन सफर में खो जाइए।

0: दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आपको बता दूं ब्रेक के तुरंत बाद आप सुन पाएंगे कुछ स्पेशल हिंदी फिल्म गीतों को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
1: Dynamic performance.

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: श्रोताओं, एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने राज्य के विभिन्न इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी आईटीआईस में एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की है। रोइंग, ताबारिजो, दिरांग, बोलिनोंग, यूपिया, मणिपोलियांग वुमेन आईटीआई सगाली, लुमला, कानुबारी और पानगिन के आईटीआईस में अलग अलग ट्रेड्स में ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है। 14 साल या उससे अधिक उम्र के इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक ट्रेड्स के लिए चयन क्लास 10 के मार्क्स और नॉन मैट्रिक ट्रेड्स के लिए क्लास 8 के मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। एडमिशन प्रोसेस, अवेलेबल ट्रेड्स, एलिजिबिलिटी, फीस और अन्य जानकारी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करें। तो दोस्तों, अगर आप स्किल डेवलपमेंट के जरिए अपना करियर को एक मजबूत पहचान देना चाहते हैं, तो इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाना ना भूलिए। ये सूचना डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी की गई है। चलिए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं कुछ और प्यारे नगमों को स्पेशल हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम के दौरान।

तो दोस्तों ये था एक खूबसूरत हिंदी फिल्म गीत जो अपने मधुर धुन और दिल को छू लेने वाले एहसासों के साथ हमें यादों की एक हसीन दुनिया में ले गया। उम्मीद है इस गाने ने आपके सफर और शाम को और भी खास बना दिया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होती है और आपको बता दूं अब से कुछ ही पलों में यानी 6:30 पर आप सुन पाएंगे आधी बोली में समाचार। उसके तुरंत बाद हम लौटेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर आज के कलाकार। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहे अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: barmene sapor lik tungam la lukan bitung tanna kedinga adi lu tadagom sim akasvani itanaga lok tat padung yasuli emele toko tatu lang kei panyar mission plan CEO Bijan MJ bunyi eklabya CEO Anil Dipang ba kei panyar distrik loga education sector am adu yadop ba la MOU sainem ibo situng melo kei panyar distrik loga comprehensive auction plan for education mission plan 2040 district ara lo government school lo quality of education am lang equal learning opportunity am poriko takam pain do pem ne ibom dung de lage kan 8 dek 9 tarik de lo kom pori babu kiding am classroom lo ga pori bona am improve ya dop learning outcome ka dop special training pe bo kom ibota emle toko tatung bu kai panjar district lo ga government school takam lo poriko pri porimoto pe admission are lama do pe dekem bu dorbiem la toge situng FIFA World Cup 2026 lo ga group C match lo Brazil e Morocco one goal hakpinga dro min sito USA New Jersey lo ga meet life stadium lo Brazil lo Vinicius Junior bu 32 minutes de lo goal en liboto 48 nation World Cup tournament holo ga top 10 team lo Brazil e top 6 lo kadung Morocco e top 7 lo kadung world ranking lo siyum ka di lu tadago mem soluin bidung tanna kedinga aipe
1: adi lu tadago
2: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि बोली में समाचार। आदि श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार।

दोस्तों, जिंदगी में कुछ आवाजें ऐसी होती है जो सिर्फ कानों तक नहीं सीधा दिल तक पहुंच जाती है। एक ऐसी ही आवाज थी केके की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द भी था, मोहब्बत भी थी, उम्मीद भी थी और जिंदगी का हर रंग भी था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त किची कनिक और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार कार्यक्रम। दोस्तों, आज का ये खास एपिसोड समर्पित है उस गायक को जिनका आवाज ने लाखों दिलों को छुआ है, जिनके गाने आज भी हर जनरेशन के प्लेलिस्ट में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कृष्ण कुमार कुन्नांत यानी हम सबके फेवरेट केके की। दोस्तों, आज के सफर में हम जानेंगे केके की जिंदगी, उनके संघर्ष, उनकी सफलता, उनके यादगार गाने और उनके पहले अवार्ड के बारे में भी।

श्रोता दोस्तों, आपको बता दूं, केके का जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही उन्हें म्यूजिक का बहुत शौक था। दिलचस्प बात यह है कि केके ने कभी किसी प्रोफेशनल म्यूजिक गुरु से ट्रेनिंग नहीं ली थी। जी हाँ दोस्तों, वो सेल्फ ट्रेन्ड सिंगर थे। उनके लिए लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार एक बहुत बड़ी प्रेरणा थे और उनके गाने सुन सुनकर ही केके ने अपनी गायकी को निखारा। और दोस्तों, स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी म्यूजिक उनके साथ रहा, लेकिन उस समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पूरे देश उनकी आवाज के दीवाने हो जाएंगे।

दोस्तों, कॉलेज खत्म होने के बाद हर आम इंसान की तरह केके को भी अपनी जिंदगी चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी थी। उन्होंने कुछ समय तक एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया, लेकिन उनका दिल तो म्यूजिक में ही बसा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना, अगर सपने सच्चे हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर दोस्तों आया वो मोड़ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, केके ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और पूरी तरह म्यूजिक को अपना करियर बना लिया। ये फैसला आसान नहीं था। एक तरफ नौकरी की सुरक्षा और दूसरी तरफ अनिश्चित भविष्य, लेकिन केके ने अपने सपने पर भरोसा किया। इसी जज्बे ने उन्हें मुंबई तक पहुंचाया। तो दोस्तों, आगे हम और भी बातें करेंगे केके के बारे में, लेकिन आइए इससे पहले उनकी आवाज में सुनते हैं एक बहुत ही दर्द भरा गीत फिल्म हम दिल दे चुके सनम से।

नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी, समीर चाह रहा है। पापा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी, उठो। समीर हमेशा के लिए जा रहा है, जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी।

चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम आज के कलाकार में। और दोस्तों आपको बता दूं, मुंबई पहुंचने के बाद केके के लिए सब कुछ आसान नहीं था। हर रोज नए ऑडिशंस, नए लोगों से मुलाकात और अपनी पहचान बनाने की कोशिश, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और दोस्तों, बॉलीवुड में मौका मिलने से पहले केके ने लगभग 3,500 से भी ज्यादा एडवर्टाइजिंग जिंगल्स गाए। जी हाँ दोस्तों, टीवी और रेडियो पर आने वाले कई मशहूर एडवर्टाइजमेंट्स में जो आवाज आप सुनते थे, उनमें से बहुत सी आवाजें केके की थी। जिंगल्स गाते गाते उनकी आवाज म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों तक पहुंचने लगी। उनकी मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन असली पहचान अभी मिलनी बाकी थी। और फिर दोस्तों, साल 1999 में केके के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए उन्होंने गाया तरप तरप के इस दिल से। और दोस्तों, इस गाने ने रातों रात उन्हें बॉलीवुड का सेंसेशन बना दिया। गाने में इतना दर्द और एहसास था कि आज भी लोग उसे उतनी ही शिद्दत से सुनते हैं। इस एक गाने ने बता दिया कि केके सिर्फ सिंगर नहीं बल्कि जज्बातों को आवाज देने वाले कलाकार है। और दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर दोस्तों, तरफ तरफ के सॉन्ग की सफलता के बाद केके हर म्यूजिक डायरेक्टर की पसंद बन गए। चाहे रोमांटिक गाने हो, सैड सॉन्ग्स हो या एनर्जेटिक ट्रैक्स, केके हर अंदाज में फिट बैठते थे। उनकी आवाज की सबसे खास बात ये थी कि वो बिल्कुल नेचुरल लगती थी। और दोस्तों, केके को उनका पहला बड़ा अवार्ड उन्हें मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने के लिए। इस गाने ने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान दी और कई अवार्ड नॉमिनेशंस भी दिलाए। आगे चलकर उन्होंने कई प्रेस्टिजियस अवार्ड जीते और म्यूजिक लवर्स के दिलों पर राज किया। एक और खास बात ये थी कि केके पब्लिसिटी से दूर रहना पसंद करते थे। ना ज्यादा इंटरव्यूज, ना किसी तरह के शो ऑफ। उनका मानना था कि उनकी पहचान उनके गाने में है। शायद इसी सादगी ने उन्हें और भी खास बना दिया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब एक और गीत सुनते हैं केके की आवाज में, फिल्म रहना है तेरे दिल से।

दोस्तों आपको बता दूं, जितने बड़े कलाकार के थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने अपने बचपन की दोस्त ज्योति से शादी की और हमेशा अपने परिवार को सबसे ऊपर रखा। स्टारडम के बावजूद उनकी जिंदगी बहुत सादगी भरी थी। केके का मानना था कि म्यूजिक दिल से आता है और दिल तक ही पहुंचता है। शायद इसी वजह से उनके गाने हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। और दोस्तों 31 मई 2022 को कोलकाता में एक लाइव कंसर्ट के बाद केके ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ये खबर सुनकर पूरा देश सदमे में था, लेकिन कलाकार कभी सच में जाते नहीं है, वो अपनी कला के जरिए हमेशा जिंदा रहते हैं। आज भी जब हम खुदा जाने बीते लम्हे जरा सा या यारियों बचता है तो लगता है केके हमारे बीच ही है कहीं मौजूद। तो दोस्तों केके की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने पूरे करने के लिए टैलेंट के साथ मेहनत और सब्र भी जरूरी होती है। दिल्ली का एक सपने देखने वाला लड़का अपनी लगन और आवाज के दम पर भारत के सबसे पसंदीदा सिंगर्स में शामिल हो गए। इसी के साथ हम केके को दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी मधुर आवाज को सलाम करते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किची कनिक, आपसे इजाजत चाहती हूं। मिलते हैं आज के कलाकार के अगले एपिसोड में एक और महान कलाकार की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। इसी के साथ दोस्तों जाते जाते आपको एक और गीत सुनवा देते हैं केके की आवाज में।

0: तो दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम आज के कलाकार यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे निशी बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें और बने रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: आकाशवाणी ईटानो पुकुमा हिरपोल का अलोलूरी गोला लुप नाने तो उरोम का कहने बाजे रेम थार्मेल अलमेल सुरुंगा निशी आम आर मुरंजी ग्रेम तानगे द ताचो बस सुरुंगे शिप यम तापा चोरे जब जरा ची दरम आकुम रिपु बाबला प्राचीन सलब क्या मुके एन्य ने कागो तीक बे इंद्र पुकुन फ्लोमिस्टन नम नरेंद्र मोदी या मुरुम प्राची मुके गा नाइशु गुदा लो दूत दक बे दिलुक पुकुन महल में पातो ओके प्राची मुके लो नरम मोदी या दूत दक्तु जिरुलो सो प्राची मुके गा प्रेसिडेंट इमानुल मक्रान ग आजन बे लेकिन गो बे भारत इनोवेट में नाम है मुको जिग्रिक ला निन असालुक लोक अगुम आहम जामिशिता ग ग्रेला आरवेसी लीडरशिप आजन बीन आशा नाम लोक आगम हम जमी तारीख ने फ्लोमिस्टर ने आईकोनी होटल नागरेश को लो नि गिदगा को लो सलोविकिया मोक लो भारत गि थोन थांग गिदख प्रोमिस्टर ने हरच अलव करतर ख न्याप को महब मे पा था तो ओ लो नरमोदी ये फ्रांस मोग प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ग अजेन ब लेकर गो भारत इनोवेट से में नाम हम नाइस गदा ग पेलास देश एक्सपोजिशन लो मोको जिरकुन हम मे पा था तो ओ सोक इवेंट लो भारत का स्टार्टअप हम ला इनोवेशन इकोसिस्टम हम चिमरु आखें वाला चेमनी गोबे हेंतम कातम जिरकुने ओक सोक इवेंट हम दो कुनाम का कुक लो सो फ्लोमिस्टन दर मोदी ला प्रेसिडेंट मैक्रोन बनी बिला केरे लोस लो निन असाले के लो का अगम आहम जमीशी तारीख ने हम ला में पा था तो पोल तोलो ओगो कुन हम हुरुक दब रेने नान एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम सिम डेवलप मोलन दो कुब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ग आजेन ब रिगोमेंगो हम ने बुलु रिबा मेंबर ब्रिक ने हम ला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एसरो ग चेयरमैन वी नारायणन य जापा फुगम हम ला मेन पादो ओक बेंगलुरु लो सीएसआईआर राइज कॉन्क्लेव क बा हम बा को कु लो एसरो ग चेयरमैन य अगम आ जा रेड कुला सो चंद्रयान थ्री लैंडर विक्रम हम सोलर एनर्जी ग हर ग मोत ब तुल जिनाम ह पोल तोलो अलो लुरु गुला लुए पुगुनु ब रेगदा ग मोला न्यू पुकु ब हमला जापा ताग्रिक ला एसरो ह एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ग आजेन ब लूनर लैंडर में नाम हर ग दब रेगदा ग दब डेवलप मोबा शिला मोलन ताग दनम से पोल तोलो चिब्रे एनी अलो वो हेगदाग मोलारिक ने हमला चेयरमैन ये जपा ताप कुम हम तो वर्ल्ड फ्लड डोनर दे आलो हम मना ग क्लोसोम उ ग उ यका हम काकुम जिन ग दे ने अलब में साद कुन हम ल पांगनम आगम हम अरुणाचल प्रदेश स्टेट ग गवर्नर केटी परनाइक य जाबलिक जिप कुम ओक्सो क उ ग उ हम यका काकुम जिनम लोक सो अलग लोदा के हम ये एच आप चीन हग दे ने जीबा पापा जिग ला केस अलग से ग ग कुन ये कई कुन बरित कुन हम ला गवर्नर ये जब तापु कुन म और के एच आप इन्हें के अलग चीन हग दे ने ला आप ने अने ग दे ने ऑपरेशन मोन्या कुनाम नी गते ने ओक कैंसर एच चिन गते ने उग उई लोक अलवा जीबा पापा न्याग दुकुनबा खबला गवर्नर ये जापा

0: kubah kham to ngul shin shi pu is ma khaswani itano pukum lok thal to nya to ki panyar district lo suti po ta pur rigo nam te kham alaba hilen daglen gam to kub mor go fo al ho ya choli ge mla nerma to ko ta tung la ki panyar mission plan ceo bejayan MJ Bunya, Memorandum of Understanding, Eklavia CEO Anil Deepak Ajanba signed Bobasif Kumakhav Mempato, Oka, Key Pioneer Mission Fund 2040 Ara Loka, Comprehensive Action Plan for Education Law, Reva Membam Gagrik La Sorkarga School Tulo, Purigo Ham Alan Namte Law, School A Muluham Gurish Chiba, Ripa Mempa, Moto Kuba Sokarigo Mengo Ham, Remen Rebga Tukunaham Mempata. Oxok Rigomingo Ham Remen Rep Ganam B Kilasga Ura Lo Purham Yem Mugrik La School Agut Ne Ritomentum Sad Hukuna Lik Lo Sargut Ne Training Program Kva Go Kelga Alo Lipipine Nana Lola Alolo Kona Nan Ho Rik Pukuna Mahab Mempa Tato Oxok Tayo Lo Anganwadi Warkar Gud Ne Alba Terningham Brisir Dab La Home A Anyi Lok Sutipota Purham Rep Gala Alba develop gametuku besok hilipulga alo luru nanoho special program kebaham bag tap kumaham mempat tato oksok rigomengo mulham anibe regimenji gagbikla school agte ne sorkarga school lo puru mogrela alene purham Rilen la seni soje ga nitiba yuku yara molenkunam gude ne bag pag motarik ne khable mempat tato Murum US New Jersey ga Mete Live Stadium lo FIFA World Cup 2026 ga Group C match ham kika mesi kokolo Brazil la Morocco vni gol akeshatak go Jimmy Shipkuma ok Brazil ga gol ham chumum gola any minute ara lo Vinicius Junior ya Jigrik la gol aken kalam sidaku ba mopkuma ok World Cup tournament lo champion gola pir mok ga ara lo number aklo an Brazil la number kan lo ana Morocco vni top 10 team lo an ha kit ki kab murum ki ka mish pukna me khamla mem pa to ka srungin shi pu ye ha bo
1: shrim ga ning ga arim ga nyod so mul ga ping ko lo nul malang ga lo kyam te ki nam mul ni isang ga dulungam pane hati ma
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम और निशी श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। आपको बता दूं आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों वक्त हो चला है महिला एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम मेरी बात का।
3: नमस्कार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अत। स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का महिला जगत कार्यक्रम में। श्रोता आज के इस अंक में हमारे साथ स्टूडियो में है विमेन एंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी मिसालों में से एक तुमी रुबा ओनर एंड फाउंडर ऑफ ओविनियम्स कैफे एंड बेकरी अरुणाचल प्रदेश। तो तुमी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
4: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
3: तो जैसे कि आप जानती है कि ये जो कार्यक्रम है ये महिलाओं के लिए है, खास करके जो हमारी महिला सहेलियां है जो यूथ है उन लोगों पर आधारित है। तो इस कार्यक्रम में जाहिर सी बात है हम ओवेनियम्स के जो स्पेशलिटी है उसके बाद जो फ्लेवर्स एंड रेसिपीज के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी जो जर्नी है एक बेकर के तौर पे उसको अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आप अभी बहुत ज्यादा महिलाओं के और यूथ्स के इंस्पिरेशन बनी हुई है। तो हम चाहेंगे आपकी जो कहानी है उसको हमारे श्रोताओं के साथ जो जर्नी है उसको शेयर करें और उन्हें और इंस्पायर करें।
4: तो मेरा जो जर्नी है ये स्टार्ट हुआ अराउंड 2017 के आसपास
3: जी।
4: तो एक्चुअली मैंने प्रॉपर कुछ कोर्स नहीं किया ये डिग्री के फील्ड में। मैंने एक्चुअली

0: ग्रेजुएशन डिजाइनिंग पे किया है,
1: जी
0: तो फैशन डिजाइनिंग किया था. बट देन लाइक बहुत कुछ हुआ एंड देन मैं वापस आ गई. उसके बाद मुझे खाने का बहुत शौक है, तो आई एम
1: अच्छा
0: लाइक अ फूडी. तो क्या हुआ कि लाइक घर पे आई यूज टू बेक अ लॉट, तो बेक
1: अच्छा
0: बहुत करती थी. एंड देन फ्रेंड्स एंड फैमिली को यू ऐसे ही रेसिपी टेस्ट करा, फिर किसी को खिलाया, फीडबैक लिया कैसा है क्या है. तो ये सब करते करते लाइक एक दो ऑर्डर्स आना शुरू हो गए
1: अच्छा
0: फॉर बर्थडे केक्स
1: अच्छा घर पे
0: घर
1: बैठे
0: पे.
1: पे
0: हाँ,
1: अच्छा
0: तो इनिशियली कोई स्टोर नहीं था,
1: हाँ
0: तो एक दो ऐसे लाइक फ्रेंड्स का किसी का बर्थडे हो गया तो उनने बोला कि चलो एक केक बना दो. तो इट वॉज अ हॉबी, तो आई वॉज
1: हाँ
0: लाइक हैप्पी, ठीक है खाने वाला कोई मिल रहा है, इट्स
1: हाँ
0: गुड नाउ. तो बनाया, फिर ऐसे ही चलते चलते लाइक धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग थोड़ा थोड़ा ज्यादा ऑर्डर्स.
1: अच्छा
0: तो मुझे लगा कि मे बी दिस कैन बी अ करियर, मे
1: हाँ
0: बी. तब स्ट्राइक हुआ कि मे बी हाँ ये कर सकते हैं, बट इतना श्योर नहीं था कि हाँ ये करना ही है. दिमाग में ऐसे था कि मे बी हाँ इसको एक ट्राई दे सकते हैं. ऊपर से इंटरेस्ट था, हॉबी था,
1: हाँ
0: पैशन था, तो खाने का शौक भी था.
1: हाँ
0: तो वो ऑर्डर्स लेते गया एंड देन उसके बाद एक दो साल लाइक वन एक डेढ़ साल में भी ना, तो होम बेस्ड ही था, हम लोग
1: हाँ
0: बस केक्स का ऑर्डर लेते थे, बर्थडे
1: अच्छा
0: केक्स. तो तब समय क्या था कि कैफे कल्चर इतना नहीं था यहाँ पे,
1: हाँ
0: जैसे अभी है वैसा नहीं था. तो उतना ध्यान में भी नहीं आया कि हाँ मे भी कैफे भी कर सकते हैं. तो वो जर्नी जो था एक डेढ़ साल का, उसके बाद जब एक पॉइंट आया कि हाँ यही करना है, जब आपको पता चलता है कि हाँ यही करना है, तो मतलब आइडियाज और आने लगा कि क्या करना चाहिए और क्या कर
1: हाँ
0: सकते हैं मे बी इसके आसपास, केक्स के
1: हाँ
0: आसपास. तो सोचा कि चलो एक कैफे करते हैं. बट देन उसके लिए फिर क्या हो गया कि यू नीड लाइक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर
1: हाँ
0: तो वो एक इश्यू आ जाता है. अभी आपका ये जो है स्टार्टअप्स में यूजुअली क्या होता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, या आपके पास लाइक वो अमाउंट नहीं है टू
1: हाँ
0: स्टार्टअप, तो वो एक थोड़ा मुश्किल आता है. तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ फिर,
1: अच्छा
0: बट समहाउ आई मैनेज.
1: हाँ
0: एंड देन इनमें इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत थोड़ा सा हेल्प रहा. लाइक
1: अच्छा
0: डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में एक स्कीम था, चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना, तो
1: अच्छा
0: उसमें अप्लाई किया, तो उसमें एक ग्रांट मिला, तो विच हेल्प्ड अ लॉट टू
1: अच्छा
0: स्टार्ट माय फर्स्ट स्टोर. तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म
1: हाँ
0: में
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: अभी भी चालू है मेरे ख्याल से ये योजना. तो
1: अच्छा
0: इफ कोई नया एंटरप्रेनर जो जिन जिनका आइडिया बहुत अच्छा है एंड देन फुल प्रूफ है एंड देन दे आर विलिंग टू वर्क, क्योंकि एंटरप्रेनरशिप में क्या है कि आपको बहुत मेहनत करना
1: हाँ
0: पड़ता
1: वो
0: है,
1: तो है
0: इट्स लाइक इजी नहीं है.
1: हाँ
0: जैसे
1: हाँ
0: लोग सोचते हैं कि आ ये तो बस केक बना रहे या
1: हाँ
0: तो ये जस्ट गारमेंट बना रहे, मतलब इजी नहीं है, बहुत सारा चीजें चलता है जो कि आपको ओवरलुक करना पड़ेगा, देन
1: हाँ
0: बहुत मेहनत करना पड़ेगा कि इसको कैसे आगे लेके जाए एंड देन विजन होना पड़ेगा उसके लिए आपको,
1: वही
0: तो वो जरूरी है.
1: जी आपने अभी खुद बताया कि आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया
0: जी
1: हुआ है
0: हाँ
1: और जहां तक हमने आपके बारे में सुना है आप उसमें गारमेंट बिजनेस में
0: जी
1: भी थे,
0: जी
1: तो क्या अभी दोनों साथ साथ चल रही है या आप बेकरी है उसी पे है ओवेनियम्स पे ही
0: नहीं
1: है?
0: अभी तो 100% बेकिंग में है
1: अच्छा
0: अभी.
1: आपने जो आपका गारमेंट्स का जो
0: हाँ
1: बिजनेस है
0: हाँ
1: उसको ड्रॉप कर दिया,
0: ड्रॉप मतलब
1: आई
0: ऑन होल्ड
1: मीन
0: रखा,
1: हाँ
0: बट देन मे बी अगर फ्यूचर में लाइक टाइम, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि आपको बहुत टाइम देना होता है, तो वो आप दो तीन एक साथ, हाँ कोई लोग होते हैं जो कर पाते हैं, बट मैंने सोचा कि एक को जो अभी स्टार्ट किया है
1: हाँ
0: उसको अच्छे से टाइम देके थोड़ा आगे लेके जाते हैं, उसके बाद मे
1: हाँ
0: बी अगर कुछ और होता है तो
1: हाँ इसमें
0: देखते हैं.
1: आपका ये एक आपका हॉबी भी रहा है
0: हाँ
1: तो, और लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं है कि आपको इसमें सही नहीं लगा, ऐसे तो कुछ नहीं है। जो लोग फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं या
0: हाँ
1: फिर उस चीज को फॉलो करना चाहते हैं, उसमें कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं।
0: हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि वो करियर ठीक
1: हाँ
0: नहीं
1: हाँ
0: है, ऐसा
1: हाँ
0: नहीं. इट वॉज जस्ट कि एक हॉबी शिफ्ट हो गया, एक
1: हाँ
0: पैशन शिफ्ट हो गया, एक सर्टन पॉइंट में वो मेरा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया. तो
1: हाँ
0: आई वाज लाइक कि इसमें मेरा ज्यादा मन है
1: हाँ.
0: तो उसके मुताबिक मैंने अपना थोड़ा सा
1: हाँ.
0: जो करियर पाथ है उसको चेंज किया.
1: हाँ, जब इंटरेस्ट आपका होता हाँ. है, जब आप मतलब पैशन के साथ करता है तो हाँ. वो थोड़ा आसान लगता है और हाँ. मतलब इजी हो जाता है. तो जैसे जो बिजनेस है आपका, या फिर कहे कि ओवन यम्स का जो सक्सेस है, उसको हम उसके आउटलेट से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया 2017 में आपने होम बेस्ड शुरू किया था, तो अभी तो 23 है. वो
0: हाँ.
1: कम समय में, क्योंकि बीच में कोविड भी रहा तो उसमें भी काफी परेशानियां होगी. कोविड में तो बहुत सारी चीजों का बेचना वो तो मुमकिन नहीं था.
0: जी, जी.
1: तो इतने कम समय में देखा जाए तो आपका तो कुछ साल का ही बिजनेस रहा है, अगर हम कोविड को अगर बीच में से अगर हटा दे तो, कोविड वाला सीजन को. ऐसे में आपका 3 आउटलेट्स होना मतलब बहुत बड़ी सफलता है. तो और इसके बाद जैसे अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको ओवेनियम्स को ग्रांट भी मिला
0: जी,
1: है, तो
0: जी.
1: ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सक्सेस है ओवेनियम्स के लिए. तो बहुत बहुत बधाई उसके लिए. तो इसमें मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ओवेनियम्स के 3 आउटलेट्स है, उसमें कितने लोगों को आप एम्प्लॉय कर पाते हैं, कितने लोग वहां पे काम करते हैं?
0: ओके, अभी अगर मेरा 3 आउटलेट्स है हमारा अब, एंड देन हमारा एक सेंट्रल किचन है,
1: अच्छा,
0: तो उसको सबको मिला के इन अराउंड 16 to 17 लोग हैं.
1: अच्छा, तो वो लोग भी एक ट्रेन बेकर है?
0: नहीं, यहाँ पे क्या है कि ट्रेन बेकर मिलना थोड़ा मुश्किल है.
1: अच्छा.
0: आपको बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं जो कि ऑलरेडी जिनने काम किया हुआ है, तो वो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए.
1: हाँ.
0: तो मैंने क्या किया कि बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट लोग बुलाए, एम्प्लॉयज हायर किए, देन रेसिपी दे दिया, बनाओ कर दिया, ऐसा
1: हाँ.
0: नहीं है. तो
1: अच्छा.
0: आई यूज टू बेक ऑल्सो, इवन आई बेक अभी भी. तो मैंने क्या किया कि आई लाइक यहाँ पे 2-3 लोग हायर किए यहाँ लोकली, मोस्टली वुमेन. लाइक आप बोल सकते हैं कि 90% वुमेन एम्प्लॉई है. हाँ. तो 2-3 मैंने लोग हायर किए, उनको ट्रेनिंग दिया पहले.
1: अच्छा.
0: कि ये रेसिपी से ये बनाने हैं. उसके बाद हमने लाइक मैंने जो क्यूरेट किया, मे बी मेरे टेस्ट के हिसाब से जो चीजें हैं, मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा है, ये लाइक मार्केट में पसंद किया जा सकता है, तो उस हिसाब से हमने मेन्यू रेडी किया, एंड देन स्टाफ को ट्रेन किया, खुद ही किया मैंने सब कुछ.
1: अच्छा.
0: तो उसके बाद लाइक वो चेन बनाना पड़ता है फिर ना. तो एक 4 स्टाफ है, मे बी उसके नीचे और 2 लगा दो, फिर उनको सीखने दो, ऐसे करके धीरे धीरे वो स्टाफ ये बनने लगा. क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्रोफेशनल्स है, ट्रेन प्रोफेशनल्स ज्यादा नहीं मिलते.
1: क्योंकि अरुणाचल,
0: हाँ, अरुणाचल में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए.
1: हाँ, वही वही.
0: तो स्किल ट्रेनिंग बहुत कम है लोगों के पास, जो स्किल एक्चुअल स्किल ट्रेनिंग है ना.
1: हाँ.
0: यहाँ पे क्या होता है कि लोग पढ़ने में लगे रहते हैं, विच इज नॉट बैड, जो गलत नहीं है.
1: हाँ.
0: और सबका अपना अपना एक
1: एम
0: होता है,
1: हाँ.
0: करियर को लेके अपना चॉइसेस अलग अलग होता है. बट देन कोई कोई अगर इसीलिए एक जिनको इंटरेस्ट है कुछ फील्ड में, नॉट जस्ट बेकरी या कोई अदर फील्ड जो भी हो, एक स्किल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. तो अगर आपके पास वो स्किल है तो बिना सर्टिफिकेट के भी आपका स्किल को देख के आपको कोई हायर कर लेगा.
1: हाँ, तो उसमें भी आप कमाई है वो कर,
0: हाँ,
1: सकते.
0: वो कर सकते हैं. तो वो स्किल ट्रेनिंग होना जरूरी है.
1: ये जो ट्रेनिंग है वो बेकिंग का, क्या ओवेनियम्स देते हैं लोगों को?
0: अभी फिलहाल तो नहीं है.
1: अच्छा.
0: हमने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि ये भी ऐसा है कि मेरा जो मन है, अगर इफ आई स्टार्ट लाइक ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग देना चालू करूं अगर, तो प्रॉपर एक प्लेस होना है, इक्विपमेंट्स होना है. क्योंकि आप ऐसे थोड़ा सा सिखा दो एंड छोड़ दो, वो भी नहीं होता ना. तो अच्छे से एटलीस्ट एक प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल होना पड़ेगा. तो वो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था, एंड देन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, तो हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया. बट देन इन फ्यूचर हम लोग प्लान तो कर रहे हैं.
1: उसके लिए किचन भी थोड़ा अलग, आप जहाँ बैक करते हैं उस पर तो शायद
0: उसमें नहीं हो
1: सकता
0: है. हाँ, तो अलग से एक स्पेस होना पड़ेगा, एंड देन प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ आपको ट्रेनिंग के लिए, क्लासेस के लिए चाहिए होगा. तो और प्लस टाइम भी बहुत देना पड़ेगा.
1: वही वही, तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जैसे मैं अपने श्रोताओं को भी बता दूं कि जिस अभी आपने सुना कि तुम्ही जी जो है कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, खुद
0: जी
1: से
0: जी
1: अपने पसंद और हॉबी को फॉलो करते हुए उन्होंने इतना सीखा है।

0: और इतना किया है कि वो अभी बाकी लोगों को भी रख सकते हैं, काम दिला सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक अभी के जमाने में एक बहुत बड़ा अच्छा आइडिया है, ये एक अच्छा करियर ऑप्शन भी है। और जैसे अभी आपने बोला कि हर कोई अभी सरकारी नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, हर किसी को तो इस जमाने में न सरकारी नौकरी मिलने से रहा,
1: हाँ, वो तो पॉसिबल
0: और नहीं मिलने के कारण फ्रस्ट्रेट होके अपना लाइफ मतलब अपना जो टाइम बर्बाद करना वो भी तो किसी भी तरह
1: हाँ.
0: से सही नहीं है। तो जैसे जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप को ऑप्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, और हो सकता है कोई चाहते भी है लेकिन जैसे शुरू करने के लिए जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आइडियाज होने से भी कुछ लोगों का जो मॉरल है वो डाउन हो जाता है, ऐसे भी होंगे। या छोटा बड़ा कोई भी स्टार्टअप जो करना चाहता है उनको एंटरप्रेन्योरशिप का जो कुछ आइडियाज है वो आपके हिसाब से आप कुछ हमारे श्रोताओं को शेयर कर दे तो बेहतर
1: ओके
0: होगा।
1: अभी तो स्टार्टअप के लिए आई थिंक स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अगर थोड़ा सर्च करेंगे तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। एंड देन आजकल बहुत सारे ग्रांट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने टूरिज्म का बताया अभी आपको। उसके बाद अभी यहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश इनोवेटिव इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क भी है। ये है आपका इधर किंग कप स्कूल के आसपास में है,
0: अच्छा, नीति विहार।
1: नीति विहार। हाँ, तो इनका भी एक प्रोग्राम चलता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसमें भी इन लोग ग्रांट देते हैं। एट द सेम टाइम इन लोग आपको मेंटोरशिप भी देते हैं। तो
0: अच्छा।
1: बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप अवेल कर सकते हैं यहाँ पे आजकल के ज़माने में, क्योंकि पहले इतना ये सब
0: हाँ
1: नहीं था।
0: हाँ
1: आजकल सरकार भी बहुत एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं सरकार, तो उसमें क्या है कि कुछ ग्रांट्स वगैरह काफ़ी सारा अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। एंड देन उसके लिए आपको अपना जो आइडिया है, आइडिया आपका बहुत सही होना पड़ेगा कि आपको वो ग्रांट मिले। तो आइडिएशन मेरे ख्याल से उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड देन आपका स्किल, कि ऐसा नहीं हो कि जस्ट आइडिया है बट वो बनेगा कैसे, वो
0: हाँ
1: आपको देखना पड़ेगा वो चीज़। तो उसमें आपको बहुत सारा चीज़ें स्किल बेस्ड होगा, टेक बेस्ड होगा, तो उसमें कैसे आप आइडिया को फॉरवर्ड लेके जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक आइडिया है यहीं पे सब मतलब
0: हाँ
1: सीमित है, आगे उसको कैसे लेके जाना है वो सोचना पड़ेगा। उसके बाद उस हिसाब से आप, अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, तो आपको ग्रांट्स भी अवेलेबल है आजकल काफ़ी सारा,
0: थोड़ा अवेयरनेस भी होना
1: अवेयरनेस हाँ
0: पड़ेगा,
1: होना
0: कुछ थोड़ा
1: पड़ेगा।
0: रिसर्च यहाँ वहाँ पता करना
1: हाँ
0: पड़ेगा।
1: जी
0: हाँ, और जहाँ तक हम जैसे लोग समझते हैं जो स्किल से उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप में आपकी जो डेडिकेशन और जो मेहनत है वो भी मतलब बहुत जरूरी
1: बहुत
0: होंगे
1: ज्यादा, वो तो बहुत
0: क्योंकि जो
1: ज्यादा
0: सरकारी नौकरी करते हैं वो अगर 5 दिन 10 दिन भी ऑफिस नहीं जाए तो भी उनको सैलरी तो उतना ही अमाउंट आना
1: हाँ
0: ही है, लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है जो आप लोग जो काम करते हैं उसमें तो जहाँ पे मेहनत गई वहाँ पैसे भी गए,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: बाद क्वालिटी गए वहाँ भी आपके मतलब, और करियर भी विद इन कुछ समय में ही खत्म
1: हाँ
0: होने का भी
1: हाँ
0: चांसेस रहता
1: वो
0: है।
1: बहुत ज्यादा है, तो उसमें आपको मतलब परसिस्टेंट होना पड़ेगा। एंड देन इसमें क्या है कि मैंने जितना देखा है, आप एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप इंटरेस्टेड है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। लाइक इनिशियली मैंने जब स्टार्ट किया था, सुबह 4 बजे तक आई यूज्ड टू बेक अकेले रात
0: अच्छा।
1: को सुबह 4 बजे तक, क्योंकि मेरा प्रोफेशनली आई एम नॉट ट्रेन्ड, आई वॉज नॉट ट्रेन्ड, तो बहुत सारा चीजें पता नहीं था कि कैसे होना है। तो टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाते हैं, तो आपको बहुत सारा चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मे बी योर
0: नहीं, वो
1: स्लीप।
0: तो होगा ही।
1: तो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा फिर आपको, जो जो लोग सोचते हैं कि इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको।
0: जैसे कि आपका जो कंसिस्टेंसी जिसको
1: जी
0: बोलते हैं
1: जी
0: या फिर
1: हाँ
0: सस्टेनेबिलिटी
1: हाँ
0: जो है। तो इस बीच अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 MHz, जिस पर कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस तुमी रिबा, ऑनर एंड फाउंडर ऑफ ओबेनियम्स कैफे एंड बेकरी ईटानगर, और हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्ही जी, अगर हम ओविन यम्स की बात करें, उसकी जर्नी की बात करें, उसकी सफलता की बात करें, तो ओविन यम्स को आप कैसे मेंटेन करते हैं?

0: कैसे उसको आगे बढ़ने के लिए आप मेंटेन रखते हैं, क्या स्पेशलिटी है ओवेनियम्स की?
1: तो हमारा बेसिक जो बिजनेस का आइडिया है, हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग का जो बेक्ड गुडीज है जो हम बेक करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि इट्स फ्रेश, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते हैं इसके लिए. एक दो दिन आप चालू करोगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ दिन में इतना क्वांटिटी बनना सही है. तो हम लोग उस हिसाब से कम बनाते हैं कि एवरी डे हम लोग फ्रेश चीजें बनाएं, क्योंकि क्या यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, आप ट्राई करोगे तो थोड़ा पुराना मिलने से आपको भी अच्छा नहीं लगता ना, और हमको भी सर्व करना वो पसंद नहीं है. तो हम लोग क्या ट्राई करते कि हमारा जो बेक्ड गुडीज है वो फ्रेश रहे और स्वीटनेस को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ के लोग इतना ज्यादा स्वीट नहीं खाते, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं. तो हम ज्यादा ध्यान उसी पे रहता है हमारा.
0: और अगर हम क्वालिटी डेडिकेशन की बात करें तो दोनों ही बराबर है या मतलब कैसे, जिस किस पर ज्यादा हमें काम करना चाहिए?
1: मेरे ख्याल से तो बराबर है ये.
0: बराबर. और जो लोग, जो लड़कियां हैं, जो जिसका ग्रेजुएशन हो गया, जिन्होंने अपना जो भी कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया, अभी जॉब के लिए यहाँ ईटानगर बैठे हैं, या फिर जो अपने गांव में भी बैठे हो, और या फिर इवन जो होम मेकर्स है, जो घर पर है, उन लोग भी अगर मतलब ये बेकिंग दुनिया में, मतलब इसमें अगर अपना कुछ थोड़ा बहुत करना चाहे, जैसे आपने भी घर से ही शुरू किया, तो घर बैठे ही थोड़ा सा कम खर्चा में थोड़ा बहुत करना चाहे तो कैसे शुरू कर सकते हैं? क्या इसमें बेकिंग में भी ऐसे कुछ है कि आप घर बैठे बैठे थोड़ा सा पैसा कमाना चाहे तो क्या वो भी कर सकते हैं?
1: हाँ कर सकते हैं डेफिनेटली. ये आप एक पार्ट टाइम हॉबी की टाइप भी कर सकते हैं, बट उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट हल्का सा करना पड़ेगा, क्योंकि बेकिंग ऐसा है कि आप थोड़ा सा अभी बेक कर लिया, थोड़ा बाद में बेक कर लिया, वो नहीं होता है. तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा देखना पड़ेगा. हाँ बट होम बेस्ड कर सकते हैं, दैट्स इजी. थोड़ा सा वही टाइम मैनेजमेंट का इश्यू रहता है, वो
0: मतलब
1: अगर
0: ये
1: आप
0: बहुत समय
1: संभाले,
0: लेता है,
1: समय लेते हैं.
0: समय लेता
1: जैसे
0: है.
1: लोग सोचते कि बहुत जल्दी बन जाता है, ऐसा नहीं है. एंटायर प्रोसेस है ये एक ना, एंड देन टाइम काफी लेता है.
0: और अगर उसको आप एक बिजनेस पर्पस के लिए, बेचने के लिए बना रहे, तो परफेक्शन भी
1: जी
0: जरूरी है
1: जी
0: ना.
1: हाँ
0: वो भी सही बात है. तो जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश में बहुत ऐसे अलग अलग जो चीजें हैं उसमें, चूंकि ये महिला जगत कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए है, तो जो अनकन्वेंशनल जॉब है उसपे बहुत सारे लड़कों को हम देख सकते हैं. और अभी तक का जो हमने जो देखा है, इवन सोशल मीडिया में भी हम देखते हैं, तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन, मतलब महिला उसमें बहुत कम है. तो
1: जी
0: क्या कहना चाहेंगे आप?
1: कम तो है, बट देन अभी लोग बहुत सारे लड़कियां आ रहे हैं. फीमेल एंटरप्रेन्योर्स अप एंड राइजिंग है, एंड इसमें मेरे ख्याल से फैमिली का बहुत बड़ा एक रोल रहता है. बिकॉज मेरा भी अगर मैं जर्नी देखूं, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता, नॉट फाइनेंशियली बट आपका
0: मॉरली भी.
1: मॉरली हो गया, एंड देन टाइम भी देखा जाए तो मेरा इतना, मैं क्यों इतना टाइम दे पा रही हूँ, बिकॉज फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं बाकी चीजों
0: बाकी
1: में.
0: चीजों को वो मैनेज
1: हाँ
0: कर
1: वो
0: रहे हैं.
1: मैनेज कर दे रहे हैं सो दैट मैं उधर पहुंच पाऊँ, एंड देन टाइम उतना टाइम दे पाऊँ. तो मेरे ख्याल से फैमिली सपोर्ट एक रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट रिगार्डलेस, आप अगर आपका पैशन है, एंड देन इफ यूर आपको उस तरफ काम करने का, एफर्ट देने का, अगर आपको आप कर सक रहे हैं तो आप आगे जा सकते हैं. इट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप में इट्स ऑल अबाउट आइडिया, देन आपका कंसिस्टेंसी है, देन आपका एफर्ट्स, वो बहुत मैटर करता है ये सब चीजें.
0: आजकल तो वैसे भी कुछ महिला या पुरुष ऐसे कुछ तो धीरे धीरे ये गैप भी कम होते जा रहा
1: हाँ
0: है.
1: कम
0: तो
1: हो रहा है, बट इट हो रहा है,
0: हाँ
1: धीरे
0: हो
1: धीरे हो रहा
0: हाँ
1: है.
0: अच्छी बात है. तो अगर वैसे अभी हमारे समय होने को है, तो
1: जी
0: जाने से पहले
1: जी
0: जो जितने ओवेनियम्स का, जो जैसे हमने पहले भी बोला कि ओवेनियम्स का 3 आउटलेट्स है, हम जानते हैं नाहरलगन में है,
1: जी
0: ईटानगर, फिर भी लोकेशन आप हमारे श्रोताओं को बता दे, जो अपने जो आपके स्टोर में जाके, जो कैफे में जाके लेना चाहे तो.
1: ओके. हमारा पहला स्टोर जो स्टार्ट हुआ था वो 0 पॉइंट में है, KFC के सामने एक वो है. देन हमने गंगा में स्टार्ट किया है जो कि आकाशदीप का ऑपोजिट में है, एंड देन उसके बाद अभी दिस ईयर तो हमने एक नाहरलगन पे स्टार्ट किया है, ई सेक्टर नाहरलगन
0: ई सेक्टर जी, और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं।
1: ऑनलाइन अभी तक स्टार्ट, बीच में हम कर रहे थे थ्रू हंगरी जी, बट अभी कुछ समय के लिए हमने बंद किया है क्योंकि थोड़ा मैनेजमेंट में, जैसे कि 3 स्टोर है तो अभी उससे कैसे मैनेज करना पड़ेगा वो थोड़ा देखना पड़ रहा था, तो हमने अभी के लिए थोड़ा सा बंद किया है। बट देन आप यू टेलर्स वगैरह के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं,
0: अच्छा,
1: पिकअप डिलीवरी कर देते हैं एंड सेल्फ पिकअप तो है ही।
0: हाँ हाँ ठीक है, तो हम तो उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता लोकेशन सुन लिए होंगे, तो जो ओवेन यंग्स विजिट करना चाहते हैं वो जरूर जाए और चक्के देखे। तो जैसे मैंने पहले बोला कि इतने कम समय में इतने 3 आउटलेट्स, वो भी कोविड टाइम को स्किप अगर हम करें तो, हाँ, तो इसका मतलब तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा। इसलिए अपने श्रोताओं को भी मैं जरूर यही बोलना चाहूंगी कि एक बार जरूर टेस्ट करके देखें। तो अभी जो हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं उन्हें अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगी, जो खास करके जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है उन लोगों को?
1: मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे स्कोप काफी ज्यादा है क्योंकि बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अरुणाचल में मैंने क्या देखा है, एक ऐसा होता है कि कोई बेकिंग कर रहा है तो सब लग जाते हैं बेकिंग,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: कोई मैक्रम का काम कर रहा है तो सब वही लग जाते करने। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें करने को, एंड देन अगर आप थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा करें, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा आजकल नेट सबके पास रहता है, थोड़ा सर्च करें बहुत सारी चीजें करने के लिए। जैसे कि अभी एक मैक्रम वर्क भी काफी चल रहा है, एंड देन बहुत सारी महिलाएं उसमें काम कर रही है, वो एक हो गया, बहुत सारी चीजें है करने के लिए। तो अगर आप थोड़ा सर्च करें, रिसर्च अपना करें, अपना इंटरेस्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हो जाता है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि आप फूड बिजनेस में है बट आपको खाने का कोई शौक नहीं, तो आपको पता नहीं रहेगा कि क्या गलत जा रहा है, क्या सही जा रहा है। तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है,
0: बनाने के साथ साथ खाने का इंटरेस्ट होना पड़ेगा,
1: तो आपको वो टेस्ट का पता होना पड़ेगा।
0: हाँ।
1: जैसे कि आप अगर मैक्रम का कर रहे हो तो आपको वो दिखना कैसा चाहिए, कैसे मतलब अपील करे कस्टमर्स को, वो सब चीजें देखना जरूरी होता है। तो मेरे ख्याल से एक इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है ना, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है बट लोग सोचते कि हाँ ये बिजनेस अभी चल रहा है या बूम कर रहा है तो आप कूद जाते हो उसमें, तो वो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको देखना है कि आपका पैशन है कि नहीं, आप उस हिसाब का काम कर पाओगे कि नहीं, वो एक देखना जरूरी है। तो पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको कई बार लोग भूल जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि धीरे धीरे, क्योंकि आप ऑब्वियसली 1-2 साल के लिए नहीं कर रहे हो ये चीज, आपका एक करियर पाथ है ये, तो बहुत सालों तक करना पड़ेगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो ऑब्वियसली आप अपना 100% नहीं दोगे उसमें, तो दैट्स वेर फेलियर होता है मेरे हिसाब से।
0: इंटरेस्ट होना पड़ेगा,
1: इंटरेस्ट तो होना पड़ेगा आपका, एंड मेहनत करने के लिए रेडी रहना
0: वो ये बिना मेहनत का तो कुछ हो नहीं सकता। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो जो आपकी बातें हैं उनसे भी उनको बहुत प्रेरणा मिली होगी। और अपने श्रोताओं को मैं तो फिर से बताऊंगी कि तुमीरबा जो है कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ऐसे ही अपना पैशन फॉलो करके आज हम कह सकते हैं कि एक बहुत सक्सेसफुल बेकर बन गए हैं। तो आप भी उनसे प्रेरित होइए और अपना कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। जैसे इन्होंने बताया कि एक करते हैं तो सब लोग कूद जाते हैं क्योंकि उसमें कंपटीशन भी ज्यादा रहता है, तो आपको और मतलब दुगनी मेहनत करनी होती है उसमें। और कुछ जब नया करता है तब ज्यादा लोग भी नई चीजों पर ज्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं, और आप अगर मैदान में अकेला है तो बाकी ऑप्शन भी लोगों के लिए नहीं रहते। तो कुछ कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, इंटरनेट का सही उपयोग कीजिए। तो इसी के साथ हम तुमीरबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें वक्त दिया और हमारे जो महिला मित्र है खास करके उनको अपनी जर्नी शेयर किया और जो भी आइडियाज है वो शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: तो श्रोता, हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे और इसी तरह के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

तो दोस्तों इसी के साथ ही महिला एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने हुए हैं FM बैंड के 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। आइए इसी के साथ आपको सुनवाते हैं कुछ हिंदी फिल्मी नगमों को।

0: श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम अपना गीत।
1: नमस्कार, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम अपना गीत में हार्दिक स्वागत है। और इस कार्यक्रम के सफर में मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अत। आज का अपना गीत कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं सिंगपो गीत से। इस गीत को गाया है जमैका खासा ने।

अरुणाचल प्रदेश के कई जनजातियाँ जैसे निशी, तागिन, अपतनिक, गालो आदि स्वयं को सृष्टि का पहला मानव अबोतानी के वंशज

मानते हैं। उसी तरह हर समुदाय के लोगों की अपनी अपनी मान्यता है और सभी के स्रोत अलग अलग भी है, पर एक समानता है सभी जाति या समुदाय में, और वो है उनकी परंपरा या संस्कृति का स्रोत। जी हाँ, हम आज जो भी है और जिस भी परंपरा के साथ है उसका स्रोत तो हमारे पूर्वज ही है, इसलिए हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, आदर करना चाहिए और सदियों से चले आ रहे हमारे अमूल्य संस्कृति और परंपरा का संरक्षण भी करना चाहिए। तो चलिए इन्हीं बातों पर सुनते हैं अगला गीत निशी भाषा में बिजनू नाबम की आवाज़ में।

कोकुन तिखक की आवाज में आप सुन रहे थे तांगसा गीत। हमारे श्रोता मित्र सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो अब तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, बारिश के बहुत सारे अलग अलग साइड इफेक्ट्स है। जी हाँ, बारिश हर एक इंसान में अलग अलग फीलिंग्स पैदा करते हैं। जैसे जवानी बारिश में भीगना पसंद करते हैं, सूखे से बचने के लिए किसान बारिश के बूंदों को अमृत मानते हैं, मगर यही बारिश पहाड़ों में भूस्खलन पैदा कर हर तरह से लोगों को परेशान भी करती है। फिर वही बारिश में घर के अंदर बैठकर चाय की चुस्की लेना या फिर कंबल से लिपटकर सोने का भी एक अलग ही आनंद है। तो चलिए श्रोता, इसी बात पर क्यों ना हम बारिश पर एक गीत सुने। मोगेदो जी की आवाज में लीजिए पेशे एक आदि गीत।

आप सुन रहे थे नोक्ते गीत तावांग लोवांग की आवाज में। प्यार मोहब्बत में किसी के ओहदे, जात पात, रूप रंग नहीं देखा जाता, और अगर कहीं पर भी ये बीच में आ जाए तो समझ जाना कि वो सच्चा प्यार नहीं है। प्यार तो एक मीठा सा एहसास है जहाँ कुछ भी देखने और सुनने के लिए सिर्फ दिल की जरूरत होती है जो महसूस कर सके। कहते हैं ना कि कोई प्यार करे तो तुमसे करे, सिर्फ तुमसे, तुम्हें तुम्हारे ही रूप में प्यार करे, और अगर कोई तुम्हें बदल कर प्यार करता है तो वो प्यार नहीं, सौदा है। श्रोता मित्रों, ये बात हमेशा याद रखना और हमेशा खुश रहना। चलिए अपना गीत कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं गालो गीत रेरिक कार्लो दिग्बाक और मार्तो कामदा की आवाज में।

0: तो श्रोताओं, इसी गालो गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ हमारे कार्यक्रम श्रोता मित्रों को पसंद आए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आप सभी श्रोताओं से विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।
1: श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम अपना गीत यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने हुए हैं FM बैंड के 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज पर आधारित पाश्चात्य संगीत।
2: Welcome back everyone to the Western Music Program only on Akashvani Itanagar. I'm Sam, your host for the day. Today's playlist feels like a late night drive through neon lit streets, all memories playing in the rearview mirror while the future waits somewhere beyond the horizon. These songs blend indie rock, dream pop and alternative sound into a collection that is nostalgic, restless and endlessly cool. We begin with a song that pairs infectious energy with sharp observation. Brazil introduce Declan McKenna as a songwriter unafraid to challenge the narratives we are often told. Beneath its bright hooks and youthful spirit lies a song that questions perception, truth, and the stories that shape our world. Brazil by Declan McKenna.

दोस्तों, भूले बिसरे के सुरीली महफिल में अब वक्त हो चला है एक ऐसे गीत का जिसने अपने जज्बात भरे बोल और मधुर संगीत से लाखों दिलों को छू लिया था। मोहब्बत के एहसास को बेहद खूबसूरती से बयां करता ये गीत आज भी उतना ही पसंद किया जाता है अपने जितना अपने दौर में था। तो आइए सुनते हैं फिल्म दयावन का बेहद मशहूर गीत आज फिर तुम पे प्यार आया है, जिसे अपने दिल

पंकज आवास से सजाया है पंकज उठास और अनुराधा पोडवाल ने। तो दोस्तों, सुरों और जज्बातों से भरा ये नगमा सिर्फ आपके लिए।

श्रोता दोस्तों, अभी आपने इस गीत को सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के आवाजों में फिल्म सिंदूर से। अगला गीत आप सुन पाएंगे मोहम्मद रफी के आवाज में फिल्म लोफर से।

तो दोस्तों, इस गीत के साथ ही सदाबहार हिंदी फिल्में गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ ही अब हम हमारी तीसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सबको बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के अनेकों कार्यक्रमों के साथ हम आपके सेवा में पुनः हाजिर होंगे कल सुबह के 5:48 पर एक नई सुबह की नई शुरुआत के साथ। और दोस्तों, आपको बता दूं, अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से एफएम गोल्ड के चैनल की ओर से, जहां से आप सुनेंगे एफएम गोल्ड से रिलेट कार्यक्रम। तो अब आप मुझे यानी आपकी रेडियो साथी गिजी कनिक और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद तमाम सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक तीतांजंग तथा तकनीकी अभियंता पीवी द्योरी को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिये। नमस्कार, शुभरात्रि और जय हिंद।

0: इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालशिरस तालुका में मेहासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन का इंजन खराब होने से डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिसमें सभी को बचा लिया गया है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मांदना ने 68 रन की पारी खेली। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13वें ओवर में 6 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर हुई खासतौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और तीरंदाजी में भारत ने तुर्की में विश्व कप के तीसरे चरण में 2 स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में

0: शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रा के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति और भविष्य को आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रा ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रेनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। इस दौरान पश्चिमी यूरोप मामले के अपर सचिव पीयूष श्रीवास्तव, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल और फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला उपस्थित उपस्थित थे। सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ताओं के प्रमुख परिणामों का जिक्र किया गया। इनमें भारत इनोवेट्स का संयुक्त उद्घाटन और नवाचार, प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश तथा रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई चर्चाएं शामिल हैं। सम्मेलन में बताया गया कि दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक विचार विमर्शों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बढ़ता महत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 पर सवार सभी 14 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इंजन खराब होने के कारण ये नौका ओमान के तट के पास डूब गई थी। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। भारतीय नौसैनिक पोत शारदा ने श्रीलंका के कोलंबो की यात्रा पूरी कर ली है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। यात्रा के दौरान श्रीलंका की नौसेना के साथ कई पेशेवर प्रशिक्षण और खेल संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डेओक को हराया। फाइनल में धीरज ने ली वुक सियोक को हराकर अपना पहला व्यक्तिगत तीरंदाजी स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर हुई खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। ओमान के तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और तीरंदाजी में भारत ने तुर्की में विश्व कप के तीसरे चरण में 2 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।